मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: सुबह का सूरज इस धरा पर कुछ ऐसे चमकता है, प्रकृति के अंतस का कोना कोना दमक जाता है। फूल, कलियां, पौधे, पत्ते अंगड़ाई लेते टहनियों से आपस में कुछ यूं खेलते हैं कि सतरंगी आसमान में अपने पंख पसारे परिंदे भी उड़ान भर लेते हैं। और हवाओं की रफ्तार ये संदेश देती है कि सफर की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बस आगे बढ़ना है। मंजिल की राहों में हर बाधा को बस पार कर जाना है। और आपके इस सफर में आपके हर कदम पर देने आपको शुभकामनाओं का उपहार। नमस्ते लखनऊ की एक और अंक के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं। सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया की खबरें, हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ

0: इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में सबसे पहली मुलाकात किसान भाइयों के साथ। कार्यक्रम है कृषि चर्चा, आज का विषय उन्नत मत्स्य पालन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
3: शुभ प्रभात। विविधीकृत खेती की बात जब हम करते हैं तो पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ कुक्कुट पालन को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो वर्ष भर हमें आय देता है। मछली पालन करने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि तालाब का निर्माण,

0: वहां की मिट्टी की स्थिति और मिट्टी के अनुसार ही उसकी लवणीयता या क्षारीयता की जांच करा करके करना बेहतर होता है, जिससे कि उत्पादन मत्स्य का हमें बेहतर मिल सके। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है, यह हम सभी जानते ही जानते हैं। जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है, एक ऐसी सोच होती है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक माना गया है। विभिन्न जल स्रोतों में, चाहे तीव्र अथवा मंद गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हों या फिर प्राकृतिक झीलें, तालाब या मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो हम जरूर पाएंगे कि पानी और मछली दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष उपयोगिता तो है ही है, साथ ही साथ हमारी आय का साधन बेहतर बनाता है यह। मछली एक उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है। इसके उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग निरंतर प्रयत्नशील भी है। उत्तर प्रदेश के अपने ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार के तालाब, पोखरे और जल प्रणालियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसमें वैज्ञानिक रूप से मत्स्य पालन अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करके लोगों को पोषक और संतुलित आहार उपलब्ध कराया ही जा सकता है, अतिरिक्त आय भी ली जा सकती है। मत्स्य पालन के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसके पास अपना निजी तालाब हो अथवा निजी भूमि या पट्टे का तालाब, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में मत्स्य पालन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके पास अपनी निजी भूमि या तालाब हो, वह उस भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय में संपर्क करें। पट्टे के तालाब पर मत्स्य पालन के लिए पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय संपर्क किया जा सकता है। तालाबों, प्रस्तावित तालाबों की भूमि का मृदा जल के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में निःशुल्क किया जाता है, इसलिए जरा सा भी हिचकिचाहट न रखें बल्कि उसकी जांच कराएं और इसकी विधिवत जानकारी इच्छुक व्यक्ति को दी भी जाती है, जैसे अन्य तरह की मिट्टी जाँच होती है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा भूमि या तालाब का सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। मृदा जल के परीक्षणों उपरांत कोई कमी पाई जाती है तो उसका उपचार निदान मत्स्य पालन हेतु इच्छुक जो व्यक्ति हैं उनको बताया भी जाता है विभाग द्वारा। यदि भूमि या तालाब मत्स्य पालन योग्य है तो जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर संस्तुति सहित प्रोजेक्ट बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भी भेजा जाता है, जिससे वित्तीय स्थिति के बारे में ज्यादा सोचना न पड़े। बैंक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान की राशि बैंक को भेज दी जाती है। मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी एवं मत्स्य पालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ब्लॉक या तहसील स्तर पर क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी जो होते हैं उनके या फिर जनपदीय के साथ साथ मंडलीय कार्यालय से संपर्क कर भी प्राप्त किया जा सकता है। मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य विभाग, मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति या जो पालक हैं मत्स्य पालक, उनके द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर कृषि मेलों, प्रदर्शनियों में विभागीय योजनाओं एवं मत्स्य पालकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है, इसलिए सचेत रहें। कहीं आसपास इस तरह के मेले या प्रदर्शनी लग रहे हैं तो उसमें हिस्सा लें, बेहतर जानकारी भी मिलेगी और जो छूट या फिर अन्य सरकारी सुविधाएं हैं त्वरित रूप से वहां निस्तारित भी की जाती हैं। मत्स्य विपणन के विषय में जानकारी संबंधित जनपदीय कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए। उपयुक्त तालाब का चुनाव करना चाहिए। मई जून के महीने में विशेष रूप से यह कार्य संपादित कर लेना चाहिए। नए तालाब के निर्माण के लिए उपयुक्त जल स्थल का चयन करने के पश्चात मिट्टी पानी की जाँच भी कराएं। तालाब सुधार निर्माण के लिए भी मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी व आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार का निर्माण या फिर कहें कि उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। अवांछनीय जलीय वनस्पतियों की सफाई के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं। अगर नहीं है तो भी आप स्वतः इसे करें, बेहतर स्थिति बनती है। 1 मीटर पानी की गहराई वाले 1 हेक्टेयर के तालाब में 25 क्विंटल महुआ की खली के प्रयोग के द्वारा या फिर बार बार जाल चलवाकर अवांछनीय मछलियों की निकासी भी कर लेना चाहिए इसी समय।
1: उन्नत मत्स्य पालन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। आकाशवाणी लखनऊ से यह है नमस्ते लखनऊ का

0: सफर। अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी के विचार।
1: गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
2: महात्मा गांधी ने मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक में एक जगह लिखा है कि मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छा पूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खाना खा लेना होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती, नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक बनती हुई रसोई में ही डालने की बात कही तो वे बोले कि यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं, आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है, आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें या पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहां तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, लेकिन केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सफल नहीं होता, लेकिन स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए जेल से छूटने के बाद मैंने ये परिवर्तन भोजन में तुरंत किया, भरसक चाय पीना बंद कर दिया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। ये तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खाने से ब्रह्मचारी को लाभ होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं उन्हें तुरंत छोड़ न सका था, दोनों चीजें मुझे प्रिय थी। यद्यपि शस्त्र क्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्त स्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही न होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था, दूसरी दवा करने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो नहीं मानी। आखिर उसने कहा कि दाल और नमक छोड़ने का तो कोई आपसे कहे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी। मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा ये ख्याल गलत है, मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या दूसरी किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े, तुम छोड़ो या ना छोड़ो ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ, वो कह उठी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई, अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा, मुझे तो इससे लाभ ही है। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है, इसलिए तुम मुझसे आग्रह ना करो, फिर मेरे लिए भी एक परीक्षा हो जाएगी और इन दो पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है उस पर दृढ़ रहने में तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो नहीं ही रही, आप बहुत हटीले हैं, किसी की बात मानते ही नहीं। ये कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली, क्षीण शरीर फिर पनपने लगा। स्वयं उस पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक नहीं रही। नमक और दाल छोड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए और दक्षिण अफ्रीका में तो उनके परिणाम अच्छे ही आए। वैद्यक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

बापू के विचार अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। नमस्ते लखनऊ के सफर में अब समय है ईश्वर के सिमरन का। कार्यक्रम है आराधना।

राहु केतु की ना ही गम्य, तुला शनिश्चर होए है चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिस मनुष्य के जीवन में भगवान श्री राम का आश्रय होता है उसे राहु केतु जैसे ग्रह बाधित नहीं कर सकते और शनि जैसा कठोर ग्रह भी उसका सेवक बन जाता है। जब स्वयं जानकी नाथ श्री राम किसी के सहायक हो जाते हैं।

भगवान श्री राम के आशीर्वाद में जब कोई भक्त उनकी शरण में आता है तो उसके भाग्य को बिगाड़ने की शक्ति ना किसी ग्रह में रहती है, ना किसी मनुष्य में और ना ही किसी विपत्ति में। प्रभु की कृपा से उसका जीवन स्वतः ही मंगलमय हो

नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत धाता, हित पर लोक लोक पितुमाता।

कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलियुग में भगवान का नाम ही आधार है, केवल नाम सुन

प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए बस ईश्वर है वहीं।

माता रानी की भक्ति में इस गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं पंडित डीवी पलुस्कर, लता मंगेशकर, हरिओम शरण, सादत हुसैन खान और तृप्ति शाक्या।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ में अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशक सतीश भाटिया, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: प्रदत्ता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवम् उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशद्दिनाङ्कपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरलराज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेङ्गलूरुनगरे आर्ट् आफ् लिविङ्ग् फाउण्डेशन् इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद्वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विकसमारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में अब बातें सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय खरबूजे के गुण। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाले फलों की जरूरत बढ़ जाती है, और जब बात होती है गर्मियों के सबसे खास फलों की तो खरबूजे का नाम जरूर आता है। खरबूजा सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत से भरपूर भी होता है। ये फल न सिर्फ गर्मी से राहत देता है बल्कि शरीर को अंदर से हाइड्रेट करके ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज हम बात करेंगे कि खरबूजा हमारी सेहत के लिए क्यों है खास और इसे अपने आहार में शामिल करके हम किन किन फायदों का आनंद उठा सकते हैं। खरबूजा देखने में जितना आकर्षक होता है इसके अंदर मौजूद रस और मिठास उतनी ही खास होती है। ये फल मुख्य रूप से पानी और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। गर्मी के दिनों में जब शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है

0: तो पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में खरबूजा एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है, क्योंकि इसमें लगभग 90% पानी होता है, जो शरीर की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को तरोताजा बनाए रखते हैं और थकान को दूर करने में सहायक होते हैं। खरबूजा सिर्फ पानी ही नहीं देता, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो इसे सेहतमंद फलों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते भी हैं। खास तौर पर विटामिन सी, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है, ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर दिल की सेहत की बात करें तो खरबूजा हृदय के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उनके लिए खरबूजे का सेवन एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय हो सकता है। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की बीमारियों से बचाने में मदद भी करता है। खरबूजा त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन त्वचा को निखारने और धूप से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं। गर्मियों में जब तेज धूप से त्वचा झुलसने लगती है, तब खरबूजा एक प्राकृतिक उपाय के रूप में काम करता है। ये त्वचा को भीतर से हाइड्रेट करता है, झुर्रियों को कम करता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में सहायक होता है। पाचन तंत्र के लिए भी खरबूजा बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। जिन लोगों को बार बार अपच की शिकायत होती है, वे अपने आहार में खरबूजे को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये आंतों की सफाई करने और पाचन प्रक्रिया को सुधारने का भी काम करता है। जो लोग वजन घटाने की सोच रहे हैं, उनके लिए खरबूजा एक आदर्श फल है। ये कम कैलोरी वाला और पूरी तरह से वसा मुक्त फल होता है, जिसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अतिरिक्त भूख नहीं लगती है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये मीठा होने के बावजूद शरीर में फैट नहीं बढ़ाता, बल्कि उल्टा मेटाबॉलिज्म को तेज करके कैलोरी बर्न करने में सहायक बनता है। गर्मियों में अक्सर शरीर में पानी और खनिज तत्वों की कमी के कारण गर्मी लगना, हीट स्ट्रोक और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में खरबूजा एक नेचुरल कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं और हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद भी करते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में चक्कर या थकान महसूस होती है, वे रोजाना एक कटोरी खरबूजा खाकर राहत महसूस कर सकते हैं। खरबूजे को खाने के कई तरीके होते हैं। इसे ऐसे ही काटकर खाया जा सकता है, जूस बनाकर पिया जा सकता है, या फिर इसे फलों के सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। इसमें नींबू और काला नमक डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि श्रोताओं, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि खरबूजे को खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है और अपच या गैस की समस्या हो सकती है। इसे हमेशा खाली पेट या भोजन के कुछ देर बाद खाना सबसे अच्छा होता है। श्रोताओं, खरबूजा सिर्फ एक मीठा फल नहीं है, बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और पोषण प्रदान करने वाला एक बेहतरीन आहार है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: खरबूजे के गुण, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाली प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनेंगे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे नात और कव्वाली रात्रि 8:10 पर। आज के कलाकार होंगे उस्ताद सआदत हुसैन खान। इसके साथ ही लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी विंध्यवासिनी त्रिपाठी। इनके स्वर में अवधि लोकगीत सुनेंगे सुबह 9:00।

50 मिनट पर कार्यक्रम लोक रंग में और दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे प्रवीण कुमार शुक्ला का काव्य पाठ, वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। आज शाम 7:31 पर लेकर आएंगे अंग्रेजी कार्यक्रम। इंग्लिश प्रोग्राम के अंतर्गत सुनेंगे डॉक्टर शिवा राकेश की टॉक मिस्टिक विमेन इन इंडिया अक्का महादेवी। हमारी शाम की सभा के आरंभ में 5:10 पर लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग, जिसमें आज की बात का विषय होगा एवरेस्ट से आगे युवाओं के सपनों की ऊंचाइयां और चुनौतियां। साथ ही जीके और करियर विषय पर सुनेंगे क्विज शो नई उड़ान। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें विभिन्न विषयों पर सामयिक चर्चा के साथ हमारी सेहत के अंतर्गत जानेंगे जल प्रदूषण, स्वास्थ्य और जन जागरूकता के बारे में। शाम 6:30 पर होगा कार्यक्रम लोकायतन, जिसमें आज सुनेंगे डॉक्टर जयशंकर राय की वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। इसके साथ ही होगी चर्चा और सुनेंगे लोकगीत। खेती किसानी कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। आलेख और वाचन राजवीर रतन का होगा और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। इसके साथ ही कार्यक्रम में सुनेंगे लोकगीत और होगी चर्चा और जानकारी की बातें। आज दोपहर 1:15 पर महिलाओं के अपने कार्यक्रम अपराजिता में सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो अपराजिता, जिसका विषय होगा क्लाइमेट एक्शन मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।

हेलो, अपराजिता कार्यक्रम में क्लाइमेट एक्शन मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे पर्यावरण संरक्षण व संबद्ध समाज सेवी अनुराधा गुप्ता। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता उन्नत बीज का चुनाव। इस विषय पर राकेश प्रताप सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश गुफ्तगू सुबह 9:30 पर। जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:15 पर। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिले की हलचल। और अब से थोड़ी देर बाद सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, आज का विषय लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। इन सभी कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं आपकी पसंद के फिल्मी गीत भी हम समय समय पर लेकर आएंगे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, जिसमें शामिल होंगे आपके पत्र, ईमेल और फोन कॉल्स। तो ये थी जानकारी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह के 7:10 हुए हैं, थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, हमारी भारतीय सभ्यता में सनातन धर्म और योग परंपरा प्राचीन काल से ही नहीं बल्कि युगों युगों से हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रतिपादन करती आ रही है। ये भारतीय वेद पुराण और उपनिषदों में उल्लिखित श्लोक और मंत्र ही हैं जिन्होंने आदिकाल से संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को शांति, प्रेम और सद्भावना की भावना से

जीवों और प्राणियों के बीच एक सार्वभौमिक सूत्र में बांध रखा है। एक ऐसी ही अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक है, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व और इस संसार के सभी प्राणी सुखी और स्वतंत्र हों। और यही वो श्लोक है जो आज विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा मंत्र जिसका उच्चारण शांति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार के लिए किया जाता है और जो हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्म ऐसे हों जो दूसरों के जीवन में भी सुख और स्वतंत्रता लाए। दोस्तों, आज के आधुनिक जीवन शैली के परिप्रेक्ष्य में जहां आपसी संबंध मानवीयता, सामाजिकता, आत्मसम्मान, सुख दुख, कल्याण, शांति और स्वतंत्रता सर्वत्र प्राणी जीव की परम कामना बन चुके हैं, ऐसे में ये श्लोक एक शक्तिशाली मंत्र है जो इस समस्त ब्रह्मांड में लोक यानी स्थान या क्षेत्र को साझा करने वाले सभी मनुष्य और प्राणी सुखिनो यानी सुख और स्वतंत्रता के लिए एक प्रतिज्ञा और कर्तव्य परायणता का बोध कराता है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दोस्तों, ये श्लोक, ये मंत्र, ये प्रतिज्ञा एक ऐसी प्रार्थना है जिसका प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि यदि हम स्वयं सुख और दुख से मुक्ति चाहते हैं तो सभी प्राणियों और वस्तुओं के साथ हमारे संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी होने चाहिए। दूसरों को दुखी करने से सच्चा या स्थायी सुख नहीं मिल सकता। दूसरों की स्वतंत्रता छीनने से सच्ची या स्थायी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। यदि हम कहते हैं कि हम प्रत्येक प्राणी जीव जंतु को सुखी और स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो हमें अपने हर कार्य को हर विपरीत प्रश्न की कसौटी पर खरा उतारना होगा। हम कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खरीदते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारा व्यवहार, खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि हमारी सोच कैसी है, हम क्या सोचते हैं, इन सभी भावों, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक और समान बनाना होगा, क्योंकि ये दुनिया, हमारा जीवन हमारे अपने कर्मों से ही बनता है। जब हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शब्दों का जाप करते हैं, बोलते हैं या केवल सोचते हैं, और यदि हम इस ग्रह पर अपने साथ रहने वाले सभी जीवों, जिसमें हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाले जानवर भी शामिल हैं, उन सभी प्राणी की अवधारणा भी निहित है, हम उसी प्रकार की दुनिया का निर्माण शुरू कर सकते हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं।

दोस्तों, दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और हमारी अपनी खुशी और मुक्ति का संबंध इस श्लोक और मंत्र को समझने के मार्ग से ही निर्मित होता है। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने लिए कुछ मांगते हैं तो ये याचना हो जाती है, लेकिन जब आपके अंदर सभी के कल्याण की मांग हो तो वो प्रार्थना हो जाती है। और इस प्रभु के द्वार पे तो बस प्रार्थना ही सुनी जाती है। तो आइए इस संपूर्ण विश्व, इस समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव जंतु प्राणी वस्तु के सुख और स्वतंत्रता के लिए हम सब आह्वान करें, अनुष्ठान करें और इस कालातीत मंत्र के साथ आध्यात्मिक भाव से प्रभु से प्रार्थना करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहिषाः गो ब्रह्मेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।

इस मंगल कामना के साथ कि आपका दिन शुभ मंगलमय हो और आप संपूर्ण सृष्टि में शांति, प्रेम और सद्भावना का निर्माण कर सके। विविधा कार्यक्रम से अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा मीडियम वेव के मीटर पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:20 होने को हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसके पहले ये संदेश।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की, कहा प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न

0: चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी लखनऊ है, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ के अंक में समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। आज के कलाकार कृष्ण चंद्र गुप्ता, इनके द्वारा प्रस्तुत है विचित्र वीणा वादन राग बिलास खानी तोड़ी में। मध्य लय और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता द्वारा विचित्र वीणा पर राग विलास खानी तोड़ी। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, रात्रि 10:30 पर भी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कृष्ण चंद्र गुप्ता द्वारा विचित्र वीणा वादन का आनंद उठा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से नमस्ते लखनऊ का एक अंक भी अब यहीं समाप्त होता है।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं हिंदी समाचार पत्र का समाचार प्रभात। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित तो उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त

0: अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली

0: इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटन्स पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law

0: कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मसनूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी यौमे तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नवीन

0: ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे 23 सदस्य है, 2-2 दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे, जहाँ उससे विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्विशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की

0: नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। आईएमडी के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पैनुलखवामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातेह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्सफोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल टी20 बैनुलक्वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा टी20 बैनुलक्वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नज़र राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजर आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धरमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाए अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धरमैया ने डी के शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने एलएसी और सरहद से मुतालिक तनाज़े पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8:45 हुए हैं। कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की

0: फिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स और ये है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आपके मेल आपके गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। और जैसा कि ये कार्यक्रम आधारित है आपके फरमाइशी गीतों पर और इसमें शामिल करते हैं हम आपके ढेर सारे मेल, तो जिन श्रोताओं ने अभी तक अपने मेल हम तक पहुंचा दिए हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो श्रोता पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम अपना पता, तो आपको अपने फरमाइशी गीतों के साथ अपने नाम के साथ भेजना है इस पते पर हमें मेल, आपके पत्र आपकी मेल @gmail.com। करने जा रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज के इस सुहावने मौसम में इस खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म का नाम है लोफर, मोहम्मद रफी की है आवाज, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। और इस गीत के लिए हमने जिन श्रोताओं के पत्रों को ईमेल को कर लिया है शामिल, ये हैं सिक्सटर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बजाज बिट्टा बजाज, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संजीव मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई। इसके साथ ही साथ हमने शामिल कर लिया है मेल किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्टल हवा जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी का। और इसके साथ ही साथ अनारकली बाजार जगराओं से जुड़ गए हमारे साथ सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और आपके साथ हैं हमारे साथ जिला रायबलेरी गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर पत्रकार, भाई वाले रक्षा मौर्य, राम सागर शाहू, रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। तो बस कार्यक्रम की कर रहे हैं शुरुआत इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ। आप सभी श्रोताओं के मेल कर लिए हैं हमने शामिल और ये है एक प्रोग्राम आपके मेल आपके गीत।

네,

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और ये कार्यक्रम है आपके मेल आपके गीत। और इस कार्यक्रम में शामिल हो गया है हमारे और श्रोताओं का मेल, जिसमें है नाम हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे, उत्तम जामदड़े, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया का, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया, किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से राम खेलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बब्बू यादव, राम प्रसाद, देवी शंकर शुक्ला, कृष्ण कुमार सिंह कुरसठ, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवकड़ राही, श्रीमती सरिता गांवकड़, प्रिंस एकांश गांवकड़, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गांवकड़, सिद्धांत गांवकड़, लाडला टुकटुक गांवकड़, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गांवकड़, सुमित गांवकड़, कुमारी ध्वनि गांवकड़ परी, गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और आप सबके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसे हमने लिया है फिल्म दो कलियां से, और इसमें आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और इस गाने को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रवि का। तो सुनिए और एंजॉय करिए और बने रहिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के साथ।

0: तो ये समय है एक छोटे से ब्रेक का।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: स्वागत है फिर आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम आपके मेल आपके गीत में। और इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं हमारे और भी श्रोताओं के ढेर सारे मेल। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ग्राम व पोस्ट ये नाम हो चुका है बस स्टैंड लखनऊ से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत, फातिमा कौर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और इसके साथ ही साथ हमने शामिल कर लिया है नाम चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। और नाम है शामिल हमारे पास पटना बिहार से याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ आसमा कुरैशी, सरफुद्दीन आसमा कुरैशी और वसीम आसमा कुरैशी का। और आपके रेडियो सेट पर पहुंचने जा रहा है CID फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक गीता दत्त की आवाज़ में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी और जानिसार अख्तर हैं और संगीत OP नैयर का। तो आप ये सुनते हैं आप सबके पसंद पर CID फिल्म के इस गाने को।

आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म धरती से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है जिसे हमने लिया है, और बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का। और इस गाने के लिए हमने जिन श्रोताओं के मेल को कर लिया है शामिल, ये हैं नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी शिमला हिमाचल प्रदेश से, वली उल्ला डोम, डब्लू उल्ला डोम, रेशमा नाज डोम, बेबी अंसारी डोम, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा। इसके साथ ही साथ हमने कर लिया है शामिल इस मेल को जो है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और ज़रीफ अंसारी का। और शामिल हो गया है मेल फुलेर नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का। और पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में धरती फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में धरती फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत समाप्त करने की अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी मेल आपकी गीत अपने रेडियो सेट पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया इंतज़ार करें।

मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वय गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। CBSE 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में RTI फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर BDM पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच

0: में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जाँच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, DM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
1: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है। और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित UP के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में AC लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल के मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ORS के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ORS के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 1 माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी, जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को

0: खड़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा, जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे नात और कव्वाली, कलाकार होंगे उस्ताद सआदत हुसैन खान। मिस्टिक विमेन इन इंडिया, अक्का महादेवी, इस विषय पर डॉक्टर शीबा राकेश की टॉक आप सुनेंगे इंग्लिश प्रोग्राम के अंतर्गत शाम 7:31 पर।

क्लाइमेट एक्शन मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस विषय पर हेलो अपराजिता कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत। आपके साथ फोन कॉल पर आपके सवालों के जवाब में होंगी पर्यावरण संरक्षण व संबद्ध समाज सेवी अनुराधा गुप्ता। खेती किसानी कार्यक्रम में आज सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आलेख और वाचन राजवीर रतन का होगा और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:50।

but. शाम 6:30 मिनट पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे डॉक्टर जयशंकर राय की वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। जल प्रदूषण, स्वास्थ्य और जन जागरूकता, इस विषय के बारे में जानेंगे हमारी सेहत के अंतर्गत कार्यक्रम नई उड़ान में शाम 5:45 पर। युवा तरंग शाम 5:10 पर कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आज का विषय होगा आज की बात का, एवरेस्ट से आगे युवाओं के सपनों की ऊंचाइयां और चुनौतियां।

दोपहर 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता उन्नत बीज का चुनाव। इस विषय पर राकेश प्रताप सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश।

0: चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जबान हो, कुछ तब्दीलियां, उतार चढ़ाव, माइनस प्लस होते हैं। आपने जो कहा कि आप जो हालात देख रहे हैं वो आपका नुक्ता नजर है, या कोई और भी अगर मुझसे ये बात कहेगा आकर वो उसका नुक्ता नजर है, ठीक है। अगर वो कहीं गए, उन्होंने देखा, मैं अक्सर करके लोगों की जबान से ये सुनती हूँ, अरे फला साहब तो उर्दू में पढ़ रहे थे लेकिन लिख कर लाए थे हिंदी में। अक्सर मुझसे ये सवाल होता है
1: जी।
0: तो ऐसा ये तो नहीं है कि 100% लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों को, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सीख रहे होते हैं और उन्हें तलफ़ुज़ की दिक्कत है, क्योंकि देखिए उर्दू का उच्चारण या उर्दू का तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन अगर आपका सही नहीं है तो फिर इससे बड़ी आपके लिए कमी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ये वो ज़बान है कि जिसकी मिठास हमारे दिलों पर बराह रास्त असर करती है, और ये उस तलफ़ुज़ की ही वजह से होता है। तो मेरे अक्सर शागिर्द ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उर्दू ज़बान को सीखना शुरू किया और फिर जब सीखते सीखते वो पुख्ता हो गए तो वो उर्दू में ही लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस बीच में अगर किसी ने देख लिया, अरे भैया हिंदी में लिख के लाए हैं, तो उसमें कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है। जब वो सीख जाएंगे वो लिखेंगे, और जो सीखे हुए हैं रस्म अल-ख़त उनमें से 99% लोग, कोई 1% हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू को उर्दू में ही लिखते हैं। और देखिए उसका मेरा दावा ये इसलिए है कि हम जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, हम आसमान या हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इतने बरस हो गए पढ़ाते हुए, आज भी उसी तालीम से जुड़े हैं। तो उम्मीद है, और इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग रस्म अल-ख़त ना सीखें।
1: अच्छा मैम, आपने ये देखा कि उर्दू जो है वो आज पूरे आलम में पहुंच चुकी है, लोग बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलने वाले हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि उर्दू रस्म अल-ख़त की क्या बुनियादी खसूसियात हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल है ऊपर। और देखिए ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है ये मौजू। देखिए उर्दू रस्म अल-ख़त की बुनियादी खसूसियात क्या है, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। आप देखिए इंग्लिश को देखिए, हिंदी से को देखिए, या और दूसरी लैंग्वेजेस हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाती हैं, लेकिन उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उर्दू में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए कि उर्दू ज़बान, आपने कहा जैसा कि भाई हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन उर्दू में कितनी सारी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। ये बहुत बड़ी ख़ूबी है उर्दू की। आप देखेंगे इसमें संस्कृत के अल्फाज भी हैं, आप देखिए कि इसमें जो है वो अरबी और फारसी के अल्फाज भी हैं, इसके अंदर जो है उर्दू ने अपने अंदर पुर्तगाली को भी समोया है, चाइनीज़ लफ्ज़ भी मिल जाएंगे। अब इतनी सारी ज़बानें जिसमें मिक्स हो गई हैं, और फिर इतनी सारी तहजीबें भी तो मिक्स हुई साथ में, तो उन सबको मिला के हमारी उर्दू ज़बान बनी। फिर आप देखिए कि इसमें जो ख़त, यानी जिस तरीके से रस्म अल-ख़त का मतलब ये है कि ज़बान को लिखने का तरीका क्या है, तो उर्दू ने अपना एक ख़ास, कहा ये ज़रूर जाता है कि अरबी और फ़ारसी के नस्तालिक ख़त पर या उस तरह से उर्दू लिखी जाती है, लेकिन उर्दू ने उसमें बहुत कुछ शामिल भी किया है। मसलन हक्कारी आवाज़ें, जैसे भे फे थे ठे, ये सारी आवाज़ें हमने हिंदी से ली हैं, बहुत सारी आवाज़ें हमारे यहाँ संस्कृत से भी आई हैं। तो ये सारी आवाज़ें जब मिलती हैं तो उर्दू तो एक बहुत मुनफरिद, एक बहुत खूबसूरत, अपना खुद का रस्म अल-ख़त बनाती है, और यही हमारे लिए बड़े फख्र की बात है।
1: मैम, टेक्नोलॉजी का दौर है
0: जी,
1: कंप्यूटर है, मोबाइल है, फोन है, तो जो उर्दू रस्म अल-ख़त है ये जो, उसके लिए कैसा है, ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं या फायदेमंद है?
0: देखिए मेरा अपना मानना यह है कि अगर हम जिंदा रहना जानते हैं तो जो नए चेंजेस हैं, जो नई तब्दीलियां हैं, उनसे जुड़ना तो पड़ेगा। आपने कहा मोबाइल या लैपटॉप, तो हमारी, हमने तो अभी कहा इस बात के लिए कि उर्दू तो वो जबान है जिसने ढेर सारी जबानों को अपने अंदर मिला लिया। भाई हमारे लिए फख्र का सबब यही तो है, कितनी तहजीबें हमारी जबान में मौजूद हैं। तो इसी तरह से अगर कोई नई तब्दीली आ रही है, मसलन लैपटॉप है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, या आप जहाँ कहीं भी टेलीविजन है, रेडियो है, या हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो उर्दू तो अडॉप्ट करेगी, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों नहीं करेगी, और कर रहे हैं लोग। आप देखिए आप खुद भी सब कुछ मोबाइल पर टाइप करते हैं, नहीं करते तो फिर?
1: मैम जैसा कि आपने बताया कि लोगों में रुझान है, फिर भी नई नस्ल के जो लोग हैं उनमें रस्म अल-ख़त के फ़रोग के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, और क्या किन इकदाम की ज़रूरत है?
0: हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया, जिसे आपने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी एक काबिल रहम सूरत हाल है, वो ये है कि हम लोग चीज़ों को फ़र्ज़ करते हैं और उसके बाद तय कर दे,

0: देखते हैं भैया ऐसा ही है, ना तो गहराई में जाते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना उस तरफ देखना चाहते हैं। किसी ने कहा बातचीत हो रही है, अरे भैया वो रस्म उलखत खत्म हो गया, या यह है कि अब नई नस्ल तो कुछ सीखेगी नहीं, सीधा नई नस्ल पे इल्जाम लगा दिया। अरे भैया नई नस्ल से पूछो तो वो चाहती क्या है। आप देखिए कि आप छोटे बच्चों से लेके यंग जनरेशन तक, आप रेख्ता में, आपने देखता आप खुलेआम दिल्ली में देख लीजिए, आप यहाँ लखनऊ में हमारे प्रोग्राम्स में आइए, वो नस्ल बैठी होती है कि जिसने उर्दू को अपना ओढ़ना और बिछौना बना रखा है, वो लोग हर लम्हा उर्दू के अशार इतने अच्छे मुझे और आपको याद नहीं होंगे जो उनको याद हैं, वो लोग पढ़ते भी हैं और इस हद तक उर्दू में डूबे हैं कि दिन रात बात करते हैं तो तलफ्फुज से लेके हर चीज़ दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। पर हमने क्या एक मफरूजा है कि भैया नई नस्ल तो कुछ करेगी नहीं। आप देखिए एक मैं जनरल बात आपको बताऊं, किसी का इंतकाल होता है, एक दिन हमें भी मौत आनी है, अब हम मर जाएंगे तो हमारी जगह आप लेंगे नहीं लेंगे, भाई आसिफ इकबाल साहब या दूसरे कोई भी इंसान होगा वो दूसरे की जगह लेगा ही लेगा ना, तो नई जनरेशन आएगी ही आएगी। तो ऐसे ही हाँ बदलाव तो यकीनी है, पर होता क्या है कि कोई गया तो हम कहते हैं भैया अब इसके जैसा तो कोई नहीं आएगा। अरे भाई हो सकता है इससे बेहतर आए, और आता ही है। आप देखिए कि जो लोग चले गए उनके बाद क्या दुनिया नहीं चल, तो नई नस्ल मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, मैं तो देखती हूँ कि इतना जोश है सब में और सब सीखना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं।
1: मैम नई नस्ल की बात हो रही, तो नई नस्ल आजकल सोशल मीडिया से ज़्यादा आरस्ता है, तो उर्दू के रस्म अलखत से अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया किस तरीके का रोल अदा कर रहा है, उर्दू रस्म अलखत को फ़ायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है?
0: हाँ देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए दो तरह की बातें हैं यहाँ पर, अगर आप उर्दू रस्म अलखत के हवाले से बात करें या फिर उर्दू ज़बान के हवाले से बात करें, तो देखिए सोशल मीडिया जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान के हवाले से अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, सिर्फ रस्म अलखत नहीं, हालांकि हमारा मौजू रस्म अलखत है, लेकिन सोशल मीडिया से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा है। सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारा अदब इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों तक पहुंचा है कि जिन तक किताबें नहीं पहुंचती या जिन तक वो उन चीज़ों की रसाई नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो ज़बान सीख सकें। आप देखिए कि मैं ख़ुद भी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी से मैं उर्दू सिखाती हूँ, वहाँ दादा पोता पोती ये लोग उर्दू सीखते हैं, बाकायदा लिख कर भेजते हैं। हम लोग जो सिखा रहे हैं और हम अपनी मिसाल नहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए बाकायदा उर्दू रस्म अलखत सिखा रहे हैं और लोग सीख रहे हैं और उसके बाद लोग लिख लिख कर भेजते हैं, बाकायदा पूरे पूरे पैरा लिख कर आते हैं। तो सोशल मीडिया, हाँ एक चीज़ से मुझे इत्तेफाक है कि बाज़ लोग रोमन में लिख, वहाँ हम लोग टोकते हैं उनको कि भाई रोमन का आप इस्तेमाल मत कीजिए बल्कि आप उर्दू रस्म अलखत में भी लिखिए, क्योंकि उर्दू रस्म अलखत में लिखेंगे तभी उसके लिए ज़्यादा बेहतर है।
1: मैम जब रोमन की बात निकली है तो रोमन उर्दू के जो बढ़ते रुझान हैं उससे जो असल उर्दू का रस्म अलखत है उसको क्या खतरात होंगे?
0: देखिए मुझे नहीं लगता कि खतरात तो इस तरह से हैं जितना हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए उर्दू लिखनी नहीं आती, कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसी खातून है कि जब तक वो रस्म अलखत नहीं जानती है, वो सीख रही हैं अगर, तो वो रोमन के ज़रिए से चीज़ों को ना सिर्फ ये कि पढ़ सकती हैं, शेर पढ़ सकती हैं, गज़ल पढ़ सकती हैं, नज़्म पढ़ सकती हैं, लिख भी सकती हैं उसमें, लेकिन बहरहाल उनको ये एहतियात लाजिम है कि जब उन्हें ज़बान आ जाए और वो पढ़ना लिखना सीख जाएं तो फिर वो उर्दू रस्म अलखत का ही इस्तेमाल करें।
1: मैम आप भी तालीमी इदारे से जुड़ी हुई हैं और क्योंकि सिखाती तो आप लोग हैं उर्दू लिखना पढ़ना जो भी है, लेकिन आगे एक वक्त पे जा करके लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिखने का काम कम हो जाता है, तो तालीमी इदारों की क्या जिम्मेदारी है, क्या तजावीज आप देंगी कि उर्दू रस्म अलखत जो है जो लोगों में वो रुझान हमेशा बना रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा और आपको ये बताएं कि हम लोग जिस ज़माने में तालीम हासिल कर रहे थे उस ज़माने में भी हमारे पेरेंट्स कोई या हमारे साथ हमारे जो दोस्तों का सर्किल था उसमें हर तरह के लोग थे, पेरेंट्स में बहुत हाईली क्वालिफाइड भी थे और बिल्कुल घरेलू भी थे, सब तरह के पेरेंट्स थे। ऐसे में हम लोगों ने सभी दोस्तों ने तालीम हासिल की और उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा, तो हमारे यहाँ ये था कि हम लोगों को तीनों ज़बानें सिखाई जाती थी। हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग थे अगर वो हिंदी भाषी थे तो वो उर्दू भी पढ़ते थे, उनके हाथ की रसीदें हमारे पास मौजूद हैं आज भी। इसी तरह से हम लोगों ने उर्दू पढ़ी तो हम लोगों को हिंदी भी पढ़ाई गई और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जगहों पर उर्दू हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी पेपर्स भी होते हैं। तो मेरा कह

0: करना ये है कि हम ये ना अपने दिमाग में तय कर लें, नई नस्ल से भी खास तौर से और अपने लोगों से भी, कि भाई देखिए हम अगर कई जबानें सीखें तो हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत बेहतर है। हिंदी हमारी हिंदुस्तान की जबान है, हमारी हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रूह का रिश्ता है, दोनों सगी बहनों की तरह से हैं, तो अगर हम उर्दू पढ़ें तो हम हिंदी ज़रूर पढ़ें, उर्दू रस्म अल-ख़त सीखें, हिंदी रस्म अल-ख़त भी सीखें, और साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखें, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल काम करना है हमें तो, जो आपने कहा आपका सवाल बहुत बहुत अच्छा है, आज की ज़रूरत है ये सवाल कि अगर हम ऑफिसेस में जा रहे हैं, हमें अपना कोई लेटर लिखना है या हमें अपनी कोई बात कहनी है, तो हमें वहाँ हिंदी और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्यों नहीं अपना दिल इतना वसी करते हैं, हमें सारी ज़बानें सीखनी चाहिए। और देखिए हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि उन स्कूल कॉलेजेस में ये तीनों ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो जिस मीडियम में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमको तो यही ज़बान सीखनी है, अगर हम दूसरी ज़बान सीखेंगे, अरे भाई हमारे बच्चे को ये नहीं आता, तो क्यों नहीं सिखाते हैं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, ये आप नई नस्ल को ब्लेम नहीं कर सकते,
1: नहीं, नहीं, तो
0: ये तो पेरेंट्स की, घर वालों की, सबकी, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को या स्टूडेंट्स को या बच्चों को तीन चार जबानें ज़रूर सिखाएं। और हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम माँ के साथ सीख के आते हैं, हिंदी और इंग्लिश हमारे स्कूल कॉलेजेस हर जगह मौजूद है, हम वहाँ सीखते हैं, तो ये क्या शिकायत है भाई कि मतलब उर्दू सीख ली है तो और क्यों नहीं सीखेंगे?
1: मैम, तालीमी इदारों की बात हुई और भी जो शोबे हैं उनकी बात हुई, एक शोबा अदबी इदारे जो हैं या जो अदबी तंजीमें हैं, वहाँ पे काम रस्म-उल-ख़त के लिए हमारे हिसाब से नहीं होता है, मुशायरे होते हैं, सेमिनार होते हैं, कोई इस तरीके से नहीं होता जिससे रस्म-उल-ख़त को फ़रोग मिले। आप उनको क्या तजावीज़ देनी चाहेंगे कि उससे रस्म-उल-ख़त को और फ़रोग मिले?
0: देखिए उसके लिए तो फिर हमें बाकायदा एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर हम कोई भी अदबी प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो वहाँ हम कुछ ना कुछ 10 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा, जितना मुंतज़मीन जो हैं वो हमें वक्त दे सकें, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि जिससे हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते, हम कहें कि भाई ठीक है, हमने आपको मुशायरे में बुलाया, आप हमारी ऑडियंस हैं, लेकिन जिस जबान को आप सुनने आए हैं 10 मिनट आप उसके अल्फाबेट्स तो सीखिए, और वहाँ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें वो भाषा या वो जबान उन्हें जो है वो सिखाई जाए, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि देखिए मुशायरों को लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी भीड़ होती है कि अगर हम इस तरह से कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को इख्तलाफ हो, मे बी पॉसिबल कुछ लोग ना पसंद करें, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं होगा ना। देखिए 90% लोग पढ़ने भी आएंगे और सीखने भी आएंगे, इसके लिए हमें जो मुंतजमीन है कहीं ना कहीं उनसे राबता करना होगा।
1: कंपटीशन टाइप,
0: हाँ बिल्कुल। हम जैसे अभी देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, अभी एक प्रोग्राम हुआ और हम लोग भी हर साल करते हैं, पर्सनल बात नहीं करूं, सिर्फ प्रोग्राम के हवाले से बात करूं, यह है कि 2-3 प्रोग्राम ऐसे फिलहाल लखनऊ में ही हो रहे हैं कि जिसमें जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए तालिबे इल्म हैं, जो जिन्हें उर्दू नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, और बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन हैं वो, या कैफी आज़मी अकेडमी है, वहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं और जगहों पर भी होते हैं, तो उसमें ये रखा जाता है कि जो नए तालिबे इल्म हैं उनके लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिशन, जैसे अफसाना कॉम्पिटिशन, ठीक, या फिर जबान सिखाई गई कुछ महीने, फिर वहाँ उन्हें एक एग्ज़ाम कराया गया और फिर उस एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट उन्हें उस प्रोग्राम में दिया गया। और मैं आपको बताऊँ, ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के प्रोग्राम, वहाँ पे जबान सिखाने के लिए इस तरह कोशिश की जाती है और उसमें काफ़ी कामयाबी भी है। पर मैंने कहा ना कि हम जानना नहीं चाहते, हम लोग करना नहीं चाहते, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये मुशायरों में भी मुमकिन है। और देखिए जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मादरी जबान से बेपनाह मोहब्बत कर, अच्छा जो उर्दू के तलफ़ुज़ या उर्दू की मिठास की शीरीनी की वजह से उर्दू को बेपनाह चाहते हैं, उन शायकीन की एक बड़ी तादाद है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो आप यकीन जानिए उमर साहब कि उसे कामयाबी मिलेगी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस जानिब हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे इल्म में ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स यहीं इस लखनऊ में हर 6 महीने पर होते हैं कि जिसमें ये कोशिश की जाती है कि नई जनरेशन इस ज़बान या इस अदब के लिए या इस रस्म-उल-ख़त को सीखने के लिए खड़ी रहे, बल्कि दूसरों को भी सिखाए।
1: मैम वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, आखिरी सवाल छोटा सा ये है कि आवाम की क्या जिम्मेदारी

उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार विंध्यवासिनी त्रिपाठी, इनके स्वर में आप सुनेंगे अवधी लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में हमारी आज की कलाकार विंध्यवासिनी त्रिपाठी, इनके स्वर में आइए अब सुनते हैं लोक भजन।

विंध्यवासिनी त्रिपाठी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीत। इसी के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, विंध्यवासिनी त्रिपाठी के स्वर में अवधि लोकगीत का आनंद आप हमारे कार्यक्रम लोक माधुरी में भी कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे दोपहर 2:45 पर। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुना रहे हैं राज फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक। अलका याग्निक की आवाज़ में बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अक्सर फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में बोल समीर के हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 10:10 हुए हैं। सुनिए न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ सकता है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने

0: के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में गोलमेज बैठक में भाग लिया। उन्होंने 50 से अधिक व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत की। ये बैठक भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से आयोजित की गई थी। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक विकास स्थिति, सुधार आधारित व्यापार माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि अमरीका ने कहा है कि उसने मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान में कार्रवाई की है। अमरीका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। बढ़ती सैन्य कार्रवाई से अमरीका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमरीका के विदेश विभाग ने ब्राजील के 2 बड़े आपराधिक गिरोहों फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल यानी पीसीसी और रेड कमांड यानी सीवी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों गिरोहों के कुल सदस्यों की संख्या 50,000 से अधिक हो सकती है। ट्रंप प्रशासन लैटिन अमरीका में ड्रग तस्करी और संगठित अपराध पर सख्ती के तहत इस तरह के कदम उठा रहा है। अमरीका के डलास शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुए भीषण विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। डलास फायर रेस्क्यू के प्रवक्ता जेसन इवांस ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला संक्रमण के बीच अमरीका, मेक्सिको और कनाडा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्रा उपायों पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। तीनों देशों ने कहा है कि ये समन्वित कदम नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान आने वाले लाखों पर्यटकों, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जबकि सीमाओं पर यात्रा और व्यापार जारी रहेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इबोला को देश में फैलने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उधर पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेसस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला प्रकोप बेहद जटिल स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में संघर्ष, असुरक्षा, लोगों का विस्थापन, खाद्य संकट और सामुदायिक अविश्वास जैसी समस्याएं संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों में बड़ी बाधा बन रही है। श्री टेड्रोस ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को यह संदेश देना है कि वे अकेले नहीं है और WHO उनकी सहायता के लिए मौजूद है। WHO की टीमें पहले से ही पूर्वी इटूरी प्रांत के बुनिया क्षेत्र में काम कर रही है। अब तक इस प्रकोप में 1,000 से अधिक संदिग्ध मामले और 238 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं। 17 मई को WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे महाद्वीपीय आपात स्थिति बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है

0: अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान के वर्ष 1850 से 1900 के स्तर से 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: रिपोर्ट में बताया गया है कि 86% संभावना है कि इस अवधि में कम से कम एक वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष 2024 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 के अंत तक अलनीनो परिस्थितियां बनने की संभावना है, जिससे 2027 में रिकॉर्ड गर्मी का खतरा बढ़ सकता है। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे अधिक वृद्धि पर गंभीर जलवायु प्रभाव की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चेम्सफोर्ड में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की है। दूसरा मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कैनेडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस के संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हो सकती है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को हराया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रपट से नए तराने फिल्मी का गानों का ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के ना।
5: पर दादी
1: हाँ
5: आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला नजराना आपके नाम जा रहा है फिल्म गदर 2 से। अरिजीत सिंह की है आवाज, बोल सईद कादरी के हैं और संगीत मिथुन का।

चित्रपट से कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, खानदानी शफाखाना फिल्म से जुबीन नौटियाल और तुलसी कुमार की है आवाज। इस गाने को लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत है पायल देव का।

चित्रपट से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अगला गाना आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है फिल्म मिशन मजनू से। जुबीन नौटियाल की है आवाज़, बोल शब्बीर अहमद के हैं और संगीत तनिष्क बागची का।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये है कार्यक्रम चित्रपट से, और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नए तराने।

0: कबूल है।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने चित्रपट से कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक।

0: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
1: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
0: एक ऐसा कार्यक्रम
1: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
0: विकास की बातें, संगीत की मिठास
1: और एक नए भारत की आवाज।
0: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
1: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और ये कार्यक्रम है नए तरानों का चित्रपट से। कार्यक्रम में पहुंच रहा है अगला गाना फुकरे।

सुपर 30। आइए सुनाते हैं इस फिल्म का गाना आपको, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत अजय अतुल का।

0: सर जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो?
1: कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं कहीं मुस्कुरा रहे,
0: मुस्कुरा तो रहे हो।
1: नहीं
0: ये लो।
2: अनंत, अरे क्या हुआ?

स्काई फोर्स इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और अफसाना खान की आवाज़ में, बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत तनिष्क बागची का।

अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज़ में मुंजिया फिल्म का ये गाना आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत सचिन जिगर का।

बार बार देखो इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं बिलाल सईद की आवाज़ में। कुमार के बोल हैं और संगीत भी बिलाल सईद का।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स, और सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम है नए फिल्मी गानों के तरानों का। ये है कार्यक्रम चित्रपट से, और इस कार्यक्रम में पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर इस कार्यक्रम का अंतिम नजराना फिल्म जीनियस से। आतिफ असलम की है आवाज़, बोल मनोज मुंतशिर के हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: अभी आप सुन रहे थे नए तराने, कार्यक्रम था चित्रपट से। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। और दिन के 11 बज चुके हैं, समय हो गया कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता जुड़ते हैं फोन कॉल के माध्यम से और सुनते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पूनम शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप भी सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत, जिसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0522-22-38-825, 0522-22-38825।

0: करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: राम बाबू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे पहले लिसनर हैं, कैसे हैं आप, कैसा है मौसम आपकी तरफ।
1: जी दीदी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और गर्मियों का आनंद ले रहे हैं। गर्मी आज थोड़ी कम हो गई, 41 भी आ गई, नहीं तो 44 तक 45 तक पहुंच रही थी।
0: जी जी, तो कहीं कुछ कुछ
1: जगह की भी हो सकती है कि पानी की बारिश बता रहा है इंटरनेट, तो मौसम कुछ ठंडा हो गया है।
0: जी जी, हमारे यूपी में बारिश हुई है कुछ जगहों पर, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी में राहत तो है। जी, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे राम बाबू जी।
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है इंग्लिश बाबू देसी मैम, गाने के बोल है दीवाना दिल हुआ दीवाना। और दीदी, कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: जी दीदी, मित्र सुन रहे हैं मेरे, कीर्ति सिंह राजपूत जी हैं, गजराज सिंह योगी जी, भगवान सिंह वर्मा जी, भारत सिंह अरवाल जी, मांगी लाल चंदेल जी और पूनम जी हैं हमारे कानपुर से। और दीदी, आपके लिए रहेगा क्योंकि दो पूनम दीदी के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी हमारी भी उनसे बात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, एक पूनम की जब दूसरी पूनम से बात होती है।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, तो चलिए कार्यक्रम में आपकी गीत को सुनवा देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं आपके रेडियो सेट पर।
1: मिंटू त्रिपाठी जी सुन रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपकी तरफ से आपके सभी मित्रों के लिए ये गीत।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। जान लेते हैं वो कहां से हैं। हेलो,
1: जिला गुना एमपी, तहसील मधुसूदनगढ़, ग्राम कीटाकड़ी से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आज हमारे एमपी के श्रोता लाइन लगा कर कॉल कर रहे हैं।
1: मूवी का नाम है आंखें
0: जी, तो जल्दी से सुनवा दें आपका गाना।
1: और गाने के बोले अंगनाम बाबा द्वारे पे माँ। और आप कैसी हो मैम?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं।
1: गर्मी कैसी पड़ रही है अभी लखनऊ में?
0: जी, लखनऊ में रात बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा सा
1: और
0: गर्मी
1: आवाज
0: में।
1: आवाज मैम आपकी थोड़ी कम आ रही मैम।
0: अभी अभी आ रही है
1: आवाज कुछ? हाँ, आने लगी अब तो, आवाज कम आ रही थी मैम।
0: जी जी, मैं कह रही हूँ कि लखनऊ में बारिश हुई है तो गर्मी में थोड़ी सी तो राहत है।
1: जहाँ तो गर्मी, जहाँ तो 45 गर्मी
0: टेम्परेचर हो रहा है। जी जी, तो क्या आपके उधर बारिश नहीं हुई?
1: हेलो,
0: मैं कह रही हूँ आपके एमपी गुना में बारिश नहीं हुई कल रात?
1: अरे अभी तो नहीं हुई मैम।
0: जी, तो कुछ कोई बात नहीं है, हम अपने यूपी से आपके तरफ थोड़ी ठंडी हवाएं भेज रहे हैं, थोड़ी गर्मी में राहत आपको भी मिलेगी। चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद।
1: जी मैम, जल्दी से भेज देना मैम।
0: जी जी जी बिल्कुल, और आप अपने रेडियो सेट पर गीत को एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आइए जान लेते हैं हमारे अगले श्रोता कहाँ से हैं। हेलो,
1: हेलो, मैं प्यारी सी क्यूट सी पूनम दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अपना नाम बताइए।
1: हम बहुत अच्छे हैं और हम पूनम दीदी की वही जानी पहचानी सिस्टर रिंकी और पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
0: रायबरेली।

0: से रिंकी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी थैंक यू। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती, क्योंकि आपसे इतनी जल्दी तो मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन हम आपसे
0: जी,
1: रहते हैं।
0: हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो रिंकी, अपने
1: जी
0: बारे में कुछ
1: बिल्कुल
0: बताइए।
1: जी, मैं तो घर पे रहती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, साथ में आपकी और हमारी दोस्ती भी रहती है, आपको हम अक्सर कहते हैं। आपकी आवाज, आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद। और देखिए, घर का काम करती हैं तो पूरे दिन आप बिजी रहती हैं, और जब आप
1: जी
0: व्यस्त होती हैं ना
1: मैम,
0: तो
1: दोपहर में फ्री हो जाते हैं, तभी
0: हाँ
1: तो आपके कार्यक्रम से जुड़
0: बिल्कुल
1: पाते हैं और आपका
0: बिल्कुल।
1: कार्यक्रम सुन पाते हैं, और ज्यादा करके तो रहता है। जी,
0: जी, तो चलिए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना
1: और मैम
0: चाहें?
1: रेडियो मेरे यहाँ सुबह 6 बजे से रात जब तक हम लोग सोते नहीं तब तक चलता रहता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा है। देखिए, ये सबसे अच्छा मित्र है आपका, है ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: चलिए, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत है आप सुनना
1: जी।
0: चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है जिगर और गीत के बोल है मोहब्बत है खुशबू। और मैम ये गीत आपको और हमारे भाई हैं दिलीप राज माही, नीरज राज माही, और मेरी दोस्त है पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी, समा
0: जी
1: परवीन, साहिब अंसारी और मोहम्मद फैज भाई, और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सबके साथ सुनना चाहेंगे मैम। जी
0: चलिए, सभी मित्रों के साथ आप गीत को एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए
1: नमस्ते
0: बहुत
1: दीदी।
0: बिल्कुल नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मांगीलाल जी। तो जान लेते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पूनम जी।
0: नमस्कार मांगीलाल जी, कैसे हैं? पहले तो ये बताइए कैसा मौसम है आपकी तरफ।
1: बहन जी, मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से ये आशा करता हूँ कि हमारी बहन जी पूनम जी भी बढ़िया हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है बड़ों का। मैं भी बहुत अच्छी हूँ
1: जी।
0: तो मांगीलाल जी, आज कार्यक्रम में पहले तो ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो रहेगा तलाश,
0: जी,
1: और गाने के बोल इस तरह से हैं, जुनूनी आत्मा आज क्या जुनली आत्मा, कोई रे बन कर चांदनी उतरा मन के आंगना।
0: जी तो चलिए, ये मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है,
1: तो आप देख लीजिए कुछ अटपटे बोल है इसके।
0: जी जी, तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवा दें।
1: बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता हूं?
0: जल्दी से ले लीजिए।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, फूलचंद जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, विजय कुमार पांडे जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, गोपाल ओझा जी हैं, मिंटू लाल तिवारी जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, इटावास है, इन सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: सभी मित्रों के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम नंबर बता देते हैं, वो भी सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। हमारा नंबर है 0522, ये हमारा कोड नंबर है 2238825। इस नंबर को मिलाकर आप हमसे बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। और हमारे साथ देख लेते हैं कौन से श्रोता कहाँ से हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कैसी हैं आप संगीता जी?
1: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम,
0: जी
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या करती हैं संगीता जी?
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ मैम।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है ना, गृहिणी होना छोटी बात नहीं होती है, पूरे दिन की पूरी पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है ना जी। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम मुझे लता दीदी की आवाज में एक गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है नाच मयूरी और गाने का बोल है झूम झूम नाच मयूरी।
0: जी तो सुनवा दें
1: दो
0: आप
1: चार दोस्तों को याद कर लूँ मैम।
0: बिल्कुल जल्दी से
1: जी पहले आप मांगीलाल जी, शारदा प्रसाद जी, रमेश जी, भगवान भैया
0: हाँ
1: और जितने भी अभी सुन रही है सबको लेके सुनना
0: सबके
1: है मैम।
0: जी जी
1: संदीप भैया भी सुनेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके सभी मित्र जिनको आपने जिनका आपने नाम लिया है और

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले श्रोता। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: आवाज़ नहीं आ रही मैम।
0: हेलो जी, आवाज़ आई अब? हेलो
1: हेलो
0: जी, आवाज़ आई अब? हेलो।
1: हाँ हेलो
0: जी, आवाज़ आ रही है अब?
1: हाँ आवाज़ ही आवाज़ था
0: जी। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम इटावा से ओम नारायण कुशवाहा जी बोल रहे हैं।
0: ओम नारायण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद
0: जी। आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दो रास्ते का है, छुप गए तारे नजारे हो क्या बात हो गई, मैं तूने काजल लगाया तिनकी रात हो गई।
0: जी, दो रास्ते फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में है।
1: दो तीन मित्र हैं,
0: जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: हाँ, और औरैया से गगनदीप कमल है, और इटावा लालपुरा से राहुल जी है, और अरकावा से सतीश जी, और रिंकी और पिंकी, और आपके लिए डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए भी आपका धन्यवाद। चलिए सुन
1: लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले श्रोता। हेलो हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं? अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं
1: जी। मैम बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं पंजाब जिला जलंधर ग्राम पर जी अकला से गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ मैम।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इतनी दूर से आप।
1: धन्यवाद मैम।
0: जी चलिए, आज क्या करते हैं आप?
1: मैम दृष्टिहीन हूँ, छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूँ।
0: जी जी चलिए, और हमारे यहाँ के कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं
1: जी मैम।
0: तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम एक तो आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है।
0: अभी आ रही है?
1: अब आ रही थोड़ी
0: जी। आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम वो गाना बताया था, वो गुलाबी गुलाबी आंखों से तू पिला दे मोहम्मद
0: जी। बनफूल फिल्म का ये गीत है और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, तो सुनवा दें आपकी पसंद का ये गीत
1: जी। ओके
0: ठीक है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। हमारे साथ अगले श्रोता कहाँ से हैं आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मेरी आवाज़ की आवाज़ बहुत कम आ रही है, जबकि रेडियो भी बज रहा था।
0: अभी आ रही है?
1: रेडियो भी लाइन छोड़ गया,
0: अभी आ रही है?
1: लाइन कट गई है आपके नखलऊ से।
0: अभी आ रही है?
1: नहीं, मैं आपकी आवाज़ तो आ रही है, रेडियो पे आवाज़ नहीं आ रही है। रेडियो में तो लाइन कट गई है आपके नखलऊ से, दिक्कत आ रही है। रेडियो अभी बज रहा था, रेडियो ससुराने।
0: चलिए, सतीश जी हमसे जुड़े थे फरुखाबाद से और उनकी पसंद का गीत हमने निकाल लिया है और सुनवा देते हैं उनकी पसंद का ये गीत। तहकीकात फिल्म का गीत वो सुनना चाहते थे, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है। आज हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हम उनको उनकी पसंद का गीत ज़रूर पहुंचा देते हैं।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले श्रोता। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं? अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सत्यम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मैडम जी, सत्यम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। और आपके इधर लखनऊ का मौसम कैसा है?
0: जी, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। रात बारिश हुई तो मौसम थोड़ा सा गर्मी में थोड़ी सी राहत हो गई है।
1: अच्छा, दिल्ली में तो बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था। क्योंकि इस बार गर्मी के मौसम में ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी तो मौसमी फल चल रहे हैं थोड़े बहुत, तो अभी जैसे जैसे टिप्स बताना चाहता हूँ गर्मी के मौसम में, जैसे कलींदे, खरबूजा, ककड़ी हैं, खीरा है, तो उनका सेवन करना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही, तो अभी जाते हैं बच्चे श्राद्ध करते हैं, नानी के घर पे जाते हैं, कहूँ नानी घर पे जाते, बुआ घर पे जाते, तो बहुत बचपन में तो जाते जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में।
0: जी। हाँ भाई, गर्मी की छुट्टियां होती हैं दादी के यहाँ, नानी के यहाँ जाने की, और
1: और
0: मौज मस्ती
1: बचपन
0: की,
1: में
0: लेकिन
1: जैसे अभी तो
0: थोड़ा सा
1: ऐसे दोपहरी को जैसे होता है तो
0: जी।
1: गुट्टा खेलते हैं,
0: हाँ
1: गिल्ली
0: हाँ
1: खेलते हैं, डंडा खेलते हैं,
0: जी
1: गेंद भी खेलते हैं, और डुक्का मिच्ची खेलते हैं, चोर
0: जी
1: सिपाही गेम भी खेलते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बचपन में खेला था, बहुत अच्छा लगता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो सब चीज़ें अब बच्चों को, वो सब गेम अब पसंद नहीं आते। कुछ बच्चे हैं जो,
1: बच्चों का गेम नहीं पसंद
0: हाँ,
1: आते मैडम जी,
0: अब
1: कहना चाहता
0: जैसे
1: हूँ
0: जैसे
1: जैसे
0: बच्चे,
1: गेम क्या, अब तो मोबाइल में सब कुछ होते हैं।
0: हाँ
1: पहले पहले हम लोग होते, आप ही लोग होते, तो पहले जब मोबाइल नहीं थे उस टाइम पे
0: जी,
1: यहाँ सहेली, आपकी सहेली जाती
0: अब
1: होंगी, गुट्टा खेलती होंगी, कुछ खेलती
0: जी,
1: होंगी, तो बहुत अच्छा लगता हुआ। कबड्डी वगैरह है, डुक्का
0: हाँ,
1: मिच्ची है, खो है, तो
0: लेकिन हम
1: बहुत
0: लोगों
1: अच्छा
0: को
1: लगता था।
0: चाहिए
1: पहले हम
0: ना
1: भी खेलते थे
0: भाई, देखिए
1: छोटे
0: हम
1: थे,
0: लोगों को चाहिए,
1: बचपन की यादें बहुत।
0: बच्चे डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन हम
1: हाँ
0: लोगों
1: हाँ
0: को भी चाहिए कि हम लोग अपने पुराने जो खेल खिलौने थे ना, इनको भूले नहीं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, भाई उस तरफ प्रेरित करेंगे बच्चों को, तो बच्चे भी उस
1: हाँ
0: तरफ
1: पुराने
0: जाएंगे
1: मैडम जी, पुराने खेल
0: जी।
1: खिलौने भूले तो नहीं, लेकिन जो है
0: हाँ
1: उसमें तो जैसे बच्चे तो भी आज जमाने में जो है, उन्हें इंटरनेट फोन दे दो तो पूरे दिन लगे रहेंगे,
0: जी
1: उनको खेल
0: जी
1: में ध्यान ही रहता, तभी तो आगे जो दिक्कत आ रही है बच्चों के लिए, क्योंकि
0: तो
1: पहले
0: यही
1: शरीर
0: यही
1: के लिए
0: तो
1: दिक्कत
0: हमारी
1: नहीं
0: जिम्मे
1: होती, ना खेला वो नहीं है।
0: यही यही तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना, कि भाई बच्चों
1: हाँ
0: को हम
1: हाँ हाँ वही तो
0: समझाएं
1: जिम्मेदारी
0: कि
1: होती है। और जैसे अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: कहीं भी
0: बिल्कुल

0: जैसे कटोरा हो उसके पानी ऊपर छत पे रखना चाहिए, पक्षियों
1: जी
0: का ध्यान रखना चाहिए, पशु और
1: बिल्कुल
0: जानवर हैं कहीं भी खेतार बांधे आते हैं तो
1: जी
0: उसमें मैडम जी का कहना खेतार बांधे तो उनका चारा पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो बहुत दिक्कत तो इल्लत होती
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल।
0: और वो
1: तो
0: जो पेड़
1: जल्दी से
0: पेड़
1: बता
0: लगाना चाहिए,
1: दीजिए,
0: पेड़
1: जल्दी
0: नहीं
1: से
0: चाहिए
1: बता
0: और पेड़
1: दीजिए,
0: जरूरी जरूरी लगाना चाहिए।
1: जल्दी
0: आकाशवाणी मुझे ये शिक्षा देती है
1: जी
0: और आकाशवाणी मुझे आज तक लो ये जानकारी दी है,
1: बिल्कुल।
0: ये पेड़ पेड़ को लगाना चाहिए, पेड़ को
1: सभी
0: नहीं काटना
1: जी
0: चाहिए,
1: सभी को
0: और
1: इस चीज़ का
0: आकाशवाणी के
1: ध्यान
0: नब्बे
1: रखना
0: वर्ष हो चुके
1: चाहिए।
0: हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद 90 वर्ष की
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी की।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज

0: जानकारी दी है,
1: बिल्कुल
0: ये पेड़ पेड़ को लगाना चाहिए कि पेड़ को नहीं
1: सभी,
0: काटना
1: जी
0: चाहिए।
1: सभी को
0: और
1: इस चीज का
0: आकाशवाणी के
1: ध्यान
0: 90
1: रखना
0: वर्ष हो चुके
1: चाहिए।
0: हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद 90 वर्ष की
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी के।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा देते हैं,
0: हाँ?
1: आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा देते हैं
0: मूवी का नाम है दिल, गाने बोले ओ प्रिया प्रिया, ये
1: जी।
0: गाने डिकेट करना चाहता हूँ।
1: जल्दी
0: अभय
1: से
0: जब इटावा से आए थे, उनको राहुल है, उनको इनके दोस्त थे,
1: सभी के लिए,
0: और गगन
1: सभी
0: देव हैं, और
1: आपके
0: राकेश
1: सभी
0: बिल्ला भी, जिससे
1: मित्रों के
0: कहूँ सुनने
1: लिए
0: वाले सबको गाने डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैडम जी आओ, आपके लखनऊ में अमित सुनी बारिश हो रही थी बहुत तेज अभी।
1: जी, सभी के लिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट।

दिल फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम

0: बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है, गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है।

0: बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी

0: दिखाएंगे।
1: जी,
2: हम तैयार हैं।
0: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
2: वो क्या साहब?
0: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
2: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
4: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत

0: से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नू।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पीजीआईएमएस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटोयूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

0: सच्चा झूठा फिल्म का की तभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। पुराने दौर के इन गीतों में जो सुकून है वो आज भी दिल को छू जाता है और यही खासियत है इस सदाबहार नगमों की जो हर दौर में दिलों पर राज करते हैं।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

दीवार फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लोफर फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, ज़िंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो जाए, ये गाने हमें एक पल ठहरने और मुस्कुराने की वजह दे ही देते हैं। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं उम्मीद फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरु मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना फ़र्ज फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। रामशंकर ने खुशियालगंज थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि सरिता, जिनकी उम्र 19 वर्ष, कद 5.5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा शरीर है, दिनांक 30 जनवरी 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने काली हाफ टी शर्ट, सफ़ेद धारीदार काली पैंट व सफ़ेद चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7317486242। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7317486242। अशोक कुमार ने थाना सलून जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि खुशबू, जिनकी उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, सुडौल शरीर है, ये दिनांक 10 मई 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने काला सफ़ेद सूट, गुलाबी सफ़ेद दुपट्टा, कत्थई चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9305519477। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9305519477। विकास ने थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि दीपाली, जिनकी उम्र 22 वर्ष, कद 4 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने बैगनी साड़ी, पीला ब्लाउज, लाल चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8354065235। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8354065235। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
0: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़रई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाक़े CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना, वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेर तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। SDRF और NDRF की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेर तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेर तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर

रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्जे हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: नशा नाश की जड़ है जो होश और जीवन दोनों को बर्बाद कर देता है।
1: और समझदारी इसी में है कि नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें।
0: मेघा, आज सखियों से हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उनका स्वागत करने के बाद।
1: बिल्कुल सखियों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम अपराजिता में। मैं हूँ आपकी सखी मेघा।
0: और मैं हूँ सीमा अग्रवाल।
1: सखियों नमस्कार।
0: मेघा, हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा यही सोचते हैं कि वो खूब तरक्की करें, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिलें और वो अपना और अपने घर परिवार का नाम रोशन करें।
1: बिल्कुल सीमा, और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो जाने अनजाने कुछ गलत राहें उनके सामने आ ही जाती हैं।
0: हाँ, ये तो तुमने सही कहा। और यही गलत राहें उनके मासूम बचपन को लीलने लगती हैं, उनकी मासूमियत को खा जाती हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें से एक है नशे की लत।
0: और इस नशे की गिरफ्त में हमारे मासूम बच्चे फंसते जा रहे हैं जैसे कि कोई भंवर हो। और जानती हो, आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 31 मई को है नो टोबैको डे,
1: यानी कि तंबाकू निषेध दिवस। और आजकल तंबाकू कंपनियों ने जहर को फ्लेवर के रैपर में लपेट दिया है, भाई स्ट्रॉबेरी, मिंट, हाँ। चॉकलेट। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ एक मजा है, लेकिन बस एक बार ट्राई करते ही बच्चों को इसकी लत लगनी शुरू हो जाती है।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अक्सर पता है बच्चों को मैं क्या देखा है कि उनका एक ग्रुप होता है जिसमें बच्चों में होड़ होती है कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं कूल हूँ, मैं कितना मॉडर्न हूँ। और बच्चे सोच ही नहीं पाती कि कूल दिखने की होड़ में, मॉडर्न दिखने की होड़ में वो अपनी ज़िंदगी को फूल से शूल बना लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा इसलिए भी होता है जब हमारे बच्चे किसी तनाव में होते हैं और इस तनाव को दूर करने के लिए बच्चे नशे का सहारा लेने लगते हैं। तो अब माता पिता होने के नाते हमारी यही जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को धुएं के कश में ना उड़ने दें
0: और साथ ही उनके दोस्त बन के रहें, ये बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और दोस्त बन के रहें और उनके साथ संवाद करें।
0: हाँ, और हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा शांत है या आसपास का कोई बच्चा शांत है, उसे अकेलापन अच्छा लगता है, वो कमरा बंद करके रहता है, गुमसुम रहता है, खोया खोया रहता है, पैसे उसके पास अचानक से या तो बढ़ गए हैं या वो अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगा है, तो उसी समय हर माँ बाप को सचेत हो जाने की, सजग हो जाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है।
1: बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़ है और इसी गड़बड़ को हमें पहचानने की बहुत ज़रूरत है। और देखो सीमा, होता क्या है, हम बच्चों को सुविधाएं तो बहुत दे देते हैं, लेकिन उन सुविधाओं के साथ ज़रूरत होती है हमें उन पर एक नज़र भी रखने की।
0: बिल्कुल,
1: कि उन सुविधाओं का प्रयोग वो कैसे कर रहे हैं, यानी कि जैसे गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सभी हम बच्चों को देते हैं, लेकिन हमें नज़र रखने की

0: जरूरत है, कहीं इसका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है।
1: हाँ, सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाथ थामे बच्चों का, उन्हें सही राह दिखाएं, नशे के इस अंधेरे से उनका बचपन बचाएं। और इसी बात के साथ एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
0: बिल्कुल।

0: से जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपराजिता में। तो सीमा जी, आज है मई माह का आखिरी अपराजिता कार्यक्रम और आज हमारी सखियां बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी कार्यक्रम
3: हेलो अपराजिता का, जहां पर फोन की घंटियों के साथ झुरती हैं ढेर सारी सखियां। देखिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरी आवाज़ बार बार लड़खड़ा रही है। तो मैं कह रही थी कि जहां पर फोन की घंटियों के साथ झुरती हैं ढेर सारी सखियां, होती हैं खूब सारी बातें, हंसी ठहाके और फरमाइशी गीत। लेकिन मेघा,
2: लेकिन आज का हेलो अपराजिता है कुछ खास,
3: जिसमें हम बात करेंगे प्रकृति रूपी सखी के बारे में जो हमें प्यार देती है,
2: कभी ठंडी छांव बनकर तो कभी बारिश की बूंदों में मुस्कुराकर।
3: और आज वही हमारी सखी हमसे चाहती है बस थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा ध्यान और कुछ छोटे छोटे बदलाव।
2: तो सखियों, इसी विषय पर आज हमारे साथ बहुत सारी अपराजिताओं की जगह सिर्फ एक अपराजिता हमारे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रही हैं,
3: जो एक समाज सेवी होने के साथ साथ पर्यावरण मित्र भी हैं।
2: और आज हेलो अपराजिता में बातचीत का विषय है क्लाइमेट एक्शन मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें विशेष अतिथि हैं अनुराधा गुप्ता जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं हम, यानी मेघा और सीमा अग्रवाल।
3: मेघा, आज ना हमारे कार्यक्रम में आई हुई हैं अनुराधा गुप्ता जी, जो कि सोशल इनोवेटर हैं, वेलनेस मेंटोर हैं और संस्थापक हैं पृथ्वी इनोवेशंस की। और पता है वो क्या कहती हैं?
4: क्या?
3: पेड़ लगाएंगे तो रुमित्र बन जाएंगे। तो चलो इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अनुराधा जी।
5: नमस्ते।
4: नमस्कार अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी लखनऊ में।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी और सीमा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
4: अनुराधा जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान सी भाषा में बताइए कि मिशन लाइफ आखिर है क्या।
5: मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा विचार था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में उन्होंने इस विचार को लेके एक पहल शुरू करी और 2022 में 2 अक्टूबर को मिशन लाइफ ऑफिशियली लॉन्च हुआ और हमारे पूरे विश्व ने इस विचार को अपनाया। और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका अच्छा। संक्षेप में ये मतलब है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जीवन में अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल रखें। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मिशन लाइफ में हमारे 7 बिंदुओं पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मैं जल्दी से आपको नाम बताती हूँ कि कैसे हम पानी के संरक्षण, सेव वाटर, सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, कि हमारा जो खाने की जो पद्धति है, जो हमारे खाने का तरीका है, वो भी कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, और फाइनली अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जो बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरे मिशन का। और मैं एक प्यारा सा कबीरदास जी का दोहा है जो पूरे मिशन लाइफ का एक निचोड़ है, वो प्रस्तुत करता है आपके सामने। मैं श्रोताओं के बीच ये दोहा जरूर रखना चाहूंगी। साई इतना दीजिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी ने इतनी प्यारी अपनी वाणी में इस बात को रखा है कि हम लोग जो एक ओवर कंजम्पशन की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर हम सब लोग संतुष्ट हो जाएं, कंटेंटेड हो जाएं, हम भी खुश रहेंगे और हमारी प्रकृति भी हमेशा हरी भरी, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी।
3: अनुराधा जी, अभी आपने प्रकृति के बारे में इतनी अच्छी बातें कही, क्यों ना अपने श्रोताओं को कोई गीत सुनवा दें, आप क्या कहती हैं?
5: बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात ले ली। एक बहुत प्यारा सा गीत है, आपने सुना होगा, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल।

0: वाकई अनुराधा जी बहुत ही खूबसूरत गाना है। और अभी आप हमें पहले बता रही थी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित बातें, तो ऐसी कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें हम अपनाकर अपनी जीवन शैली को तो स्वस्थ बनाएंगे ही और साथ में हम पर्यावरण की मदद भी कर सकते हैं।
1: मेघा जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोता सुन रहे होंगे और डेली हमारा जीवन शुरू हो जाता है, तो पूरे दिनचर्या में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख के, तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आप सबने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करके ये तीन शब्द सुने होंगे, बट इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे अंदर रिस्पेक्ट, सब चीजों के लिए सम्मान अगर हमारे दिल में होगा तो जिसका हम सम्मान करते हैं हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे या उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं बस ये 10 प्रिंसिपल्स हैं जो 10 आर्स के नाम से मशहूर हैं, हमारी पूरी फिलॉसफी ये रही है। तो रिस्पेक्ट, रीथिंक, पुनः सोचें, विचार करें कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले। फिर रिवाइव, जो हमारी बहुत अच्छी कल्चरल जो रीतियां थी जिसमें पर्यावरण रचा बसा था, मतलब हम लोग बहुत सस्टेनेबल थे बिगनिंग ईयर्स की अगर हम बात करें, बट ओवर द ईयर्स हम लोग मतलब मूव कर गए सस्टेनेबिलिटी की तरफ से हटके, हम बहुत ज्यादा उपभोगी बन गए। तो रिस्पेक्ट करें, रीथिंक करें, रिवाइव करें अपनी पुरानी अच्छी आदतों को, रिपेयर करें, रिपेयर का कल्चर बिल्कुल चला गया, अब जो चीज होती है यूज एंड थ्रो, जरा सा भी कुछ फट गया तो लगता है नया खरीद लूंगा, क्यों दोबारा, चाहे जूता हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो रिपेयर कल्चर। फिर हमारा आता है रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, बहुत ही अहम है, कोई भी संसाधन आप ले तो रिफ्यूज करना जरूरी, एक्स्ट्रा पैकेजिंग, आजकल ग्लैमर की दुनिया हो गई है, सब लोग इतना ज्यादा पैकेजिंग करते हैं, इतनी सारी चीजें उसमें लग जाती हैं और वो हमारा वेस्टेज होता है, गिफ्ट के बाद वो सारा चीज हमारा वेस्ट में चला जाता है और सिंगल यूज है वो। और रिवाइव करें अपनी अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को, और एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए जो हमारे हमारे सभी पूर्वजों ने भी बताया है कि नेचर के साथ कनेक्ट कब होता है, जब हम सुबह उठें, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, टहलने जाना, अच्छा खाना खाना, जो लोकल हमारा फूड है जो हमारे आसपास मिलता है, तो उससे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी और हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ तो बिल्कुल ही ना बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोसेस्ड और केमिकल से भरा हुआ खाना अपने फ्रिजों में रख रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हमारा, आप जानते हैं, आप प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है,
2: बिल्कुल, और बीमारियां भी कितनी बढ़ रही
1: हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बिल्कुल। और जो हमारा उत्पादन हो रहा है, जब ये बनाया जा रहा है, उनको प्रिजर्व करा जा रहा है, तो प्रिजर्व करने के लिए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके उस खाने की और आप तक पहुंच सके, तो जितना ज्यादा हम ऑनलाइन, ये जो हमारा फूड जो चेन है पूरी, हमारी सस्टेनेबल डाइट की तरफ से हम बिल्कुल हट गए, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के साथ साथ रिस्पेक्ट, रीथिंक, रिवाइव, रिफ्यूज, रिपेयर और रीपर्पस। अगर हमारा कोई चीज वेस्ट होगी, हमारे कपड़े ही हैं, पहले हमारी सब दादी नानी अच्छे से करती थी, क्यों सीमा जी आपको भी याद होगा आपके घर में कुछ भी चीज फट जाती थी तो दादी लोग फेंकने नहीं देते थे, कहते थे इसका पोछा बन जाएगा,
2: पुराने कपड़ों से नए कपड़े बना,
1: नए कपड़े बन, थैला बन गया, पोछा बन गया, झाड़न बन गया,
2: कुछ भी, तो कुछ इस्तेमाल हो जाता था, पंखे भी बनते,
1: पंखे,
2: पंखे बनते थे।
1: तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो मिशन लाइफ जो है हमें इन सब चीजों को जोड़ के कि कैसे हम अपने जीवन में सब चीजों का ध्यान

0: रखते हुए ना केवल अपने को स्वस्थ रखें बल्कि अपनी धरा को भी स्वस्थ और साफ सुथरा और हरा भरा रखें, क्योंकि पेड़ पौधे जितने लगाएंगे, लगाने के साथ साथ उनका जितना ध्यान देंगे हम, जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या भीषण पैदा होती जा रही है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट होगी।
1: जी अनुराधा जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई थी कि 10 R मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे ही कहते हैं ना, कुछ करने के लिए जब 10 हाथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वह काम जरूर सफल होता है,
2: यानी कि सामूहिक प्रयास होता है।
1: सामूहिक प्रयास, बिल्कुल।
0: और एक बहुत प्यारा सा गाना है, स्वदेश पिक्चर शायद देखी होगी हमारे सभी श्रोतागण ने।
2: हाँ।
0: एक बहुत प्यारा सा गाना है, ये तारा वो तारा, सब तारों की बात हो रही है, तारे का मतलब हम सब। तो हम सब जब मिल जाएंगे, हम सब यूनिक हैं, हमारे हाँ। सबके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्षमता है, बट हम कहीं ना कहीं बिखर गए
1: हैं। हाँ।
0: तो जब सब मिल जाएंगे तो एक बहुत सुंदर आसमान, क्या हमारा धरा बहुत सुंदर हो जाए। तो चलिए सुनाते हैं वो गाना।
1: बिल्कुल।

0: अभी हम लोगों ने गाने में सुना, तारे कितने अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं मैं सोच में पड़ गई कि क्या हमारा आसमान स्वच्छ बचा है। जब नए नए प्रयोग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात चिंता का विषय बन जाती है। अब एक और मेरे मन में सवाल आपकी बात को सुन के आया, 10 हमारे आर्स हैं, तो आप रिड्यूस में ई वेस्ट के लिए आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि इसमें वो कैसे कमी ला सकते हैं जब प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं
0: जी।
1: और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का साथ भी जरूरी है विकास के लिए। बट जब हम टेक्नोलॉजी के साथ की बात करते हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो सबसे पहले एक मूल्यांकन करें कि क्या सच में हमें इसकी ज़रूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर ज़रूरत है तो अगर हमारे पास पुरानी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो पहले हम उनको कैसे सही तरह से निस्तारित करें। तो उसको निस्तारित करने के दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं कि या तो हम जिसके पास नहीं है उसको डोनेट करने की पहल करें, और या कोशिश करें कि अगर हमारा वही मोबाइल कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है उसमें तो उसको क्या हम रिपेयर करा सकते हैं, रिपेयर करा के क्या वो ठीक हो सकती है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और भी गैजेट्स हमारे घर में यूज होते हैं। तो रिपेयर का कल्चर बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल खरीद बहुत जरूरी है कि हम जब भी खरीदें बहुत रिस्पॉन्सिबली खरीदें। डिस्पोज करने के लिए नॉर्मल गार्बेज में डाल देते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेड होता है, सिलिकन होता है, आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है। रीपर्पस या रीयूज करने के लिए सही सही जगह पे,
0: सही हाथों में पहुंचे,
1: सही हाथों में पहुंचे, उसको नॉर्मल वेस्ट की तरह अपने घर के वेस्ट के साथ मिक्स ना करें।
0: वो बात ज्यादा अच्छी लगी कि हम डोनेट करते हैं।
2: बिल्कुल, डोनेट
0: उसे क्या ना, हमने तो इस्तेमाल किया ही, साथ में हमने किसी को अगर इस्तेमाल के लिए दे दिया तो चीज काम भी आएगी, बचाव भी होगा हमारी प्रकृति का।
2: और अनुराधा जी, आपने एक बहुत

0: अच्छी बात कही। अक्सर क्या होता है ना हमारे घर में कि अब जैसे ये चलन हो गया है कि घर में चार कमरे हैं तो चार कमरे में अलग अलग टीवी होगा,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई
1: बढ़ गई
0: हैं।
1: हैं।
0: ऐसे में बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा बिजली खर्च होती है।
1: जी
0: बिजली का बचाव भी हमारी बहुत
1: बिल्कुल,
0: बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना
1: मिशन
0: चाहेंगी?
1: लाइफ में सेफ एनर्जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु रखा गया है। और जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली आती कहाँ से है, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो बिजली सब हमारे श्रोता जानते
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: कि बिजली हमारी कोयले से आती है, और कोयले
0: बिल्कुल
1: में जब आती है तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं। तो ये सारी जो ऊर्जा जो उत्पादन में जो हमारी क्षमताएं इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी क्लाइमेट चेंज, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी निर्भर है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि कहाँ पे हम बिजली के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं। अक्सर जो आपने बात कही, चार कमरों में लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं बैठ के टीवी देख सकते? क्या हम जब कमरे से निकल के बाहर जा रहे हैं तो क्या हम स्विच बंद नहीं कर सकते? ये बहुत छोटी छोटी चीजें और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, बट हम कर नहीं पाते। तो मिशन लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम करने की तरफ अग्रसर हों। तो सेव एनर्जी में यही सारी चीजें हैं कि हम गैजेट्स भी खरीदें तो 5-स्टार एनर्जी रेटिंग देखें उसकी,
0: जी
1: खरीदते समय की एनर्जी रेटिंग क्या है, सही जगह से खरीदें,
0: हाँ
1: और बिजली का कोई प्रोडक्ट अगर हमारा वो हो गया तो उसको सही तरह से डिस्पोज करें, और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबली हम हर चीज़ को यूज़ करें। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है।
0: जी ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी तरीके से एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज के दौर में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सिंगल यूज़ प्लास्टिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हर चीज़ में, पैकेजिंग में, आप चाहे गिफ्टिंग हो, पैकेजिंग हो, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तमाम हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है और वो किसी काम का नहीं होता। तो ये शायद पहल हमें खुद से करनी होगी कि कहाँ तक हम प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर सकते हैं।
0: हाँ
1: हम अक्सर बाजार जाते हैं तो इतनी सी जहमत नहीं उठाते कि हम अपने साथ थैले रख लें,
0: बिल्कुल
1: चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हो, चाहे कार में जा रहे
0: हाँ
1: हो।
0: ये
1: बच्चों
0: बात तो
1: को
0: आपने
1: भी,
0: बिल्कुल सही कही।
1: बच्चों को भी मैं चाहूंगी कि मदर्स जो हैं, बच्चों को भी, बच्चों की तरफ से ये पहल होती है कि बच्चे अपने बैकपैक में एक थैला रखे रहें।
0: हाँ
1: हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस तो वो भी एक कुछ ना कुछ अपने गाड़ी में, कार में रखे रहिए थैला। तो जब भी आपको कुछ इमरजेंसी में भी खरीदना है तो आप पॉलिथीन नहीं लेंगे वेंडर, और कोई देता भी है आपको तो आप उसको मना करिए
0: मना कर दें।
1: कि नहीं मेरे
0: हाँ
1: पास थैला है। तो सबसे सरल तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते थे कि जाते थे तो थैला लेके जाए, दूध भी आता है तो दूध के पैकेट्स तमाम है, टेट्रा पैक्स तमाम है, और
0: हाँ
1: सिंगल यूज प्लास्टिक में तमाम चीजें आती हैं। जितना भी हम जो चीजें फूड से रिलेटेड हमारे कंटेनर्स हैं, ब्लैक कंटेनर्स जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, फिर फोक्स हैं, तो अब स्ट्रॉ जो होता था, प्लास्टिक
0: हाँ
1: स्ट्रॉ जब
0: हाँ
1: हम कुछ
0: हाँ
1: पीते हैं, तो ये सारी चीजों को हम एक कंज्यूमर की तरह अवेयर हों और जागरूक होकर मना करें। जब भी हम कुछ उपभोग करें तो ये सब चीजों का उपयोग ना करें। तो हम रिफ्यूज जब तक नहीं करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म नहीं होगा। और रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, और साथ में उसको अगर आ जाती है तो रीयूज करते जाएं। अगर गलती से एक पॉलीथिन आ भी गया तो उस पॉलीथिन को ही हम पूरा हफ्ता, पूरा महीना चलाते रहें जब
0: बिल्कुल,
1: तक वो
0: जब तक कि
1: बिल्कुल,
0: वो बिल्कुल
1: और
0: वेस्ट ना हो
1: हाँ
0: जाए,
1: जब वो वेस्ट हो जाए तो
0: खत्म।
1: उसको सेग्रीगेट करके डालें, उसको मिक्स करके ना डालें। ये बहुत ही जरूरी है,
0: हाँ ये
1: हम
0: बात
1: अपने
0: आपने,
1: वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ।
0: जी ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे कि कहा जाता है कि जागरूक भी करती है सरकार समय समय पर कि जब हम अपने घरों से कूड़ा बाहर निकालते हैं
1: जी
0: तो उसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग कर दें।
1: जी
0: रसोई से डस्टबिन तक का जो सफर होता है ये इसके लिए पूरी जिम्मेदारी होती है घर की महिला की।
1: बिल्कुल,
0: तो आप ये बताइए कि घर की महिलाएं भी मिशन लाइफ में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं?
1: मैं तो चाहूंगी कि घर की महिलाएं नहीं, पूरा घर, पूरा परिवार प्रबंधन करे।
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: सही।
1: सब लोग कचरे को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे
0: हाँ
1: हैं, तो सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारा ड्राई कचरा जो रिसाइकलेबल है, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमारा लोहा लकड़ी, तो ये सारा हमारा ड्राई वेस्ट है जो रिसाइकल रिपर्पस हो सकता है, उसको हम अलग रखें और गीले कचरे के साथ कभी भी मिलाएं नहीं। और फिर हमारा एक होता है हजार्डरस कचरा, जो हमारी बैटरीज हैं, जो हमारे पेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, हमारे डाइपर्स हैं, सैनिटरी नैपकिन हैं, तो ये सब हम बिल्कुल अलग रखें। तो तीन कैटेगरीज में सेग्रीगेशन कायदे से होना चाहिए घर के स्तर पे भी, और सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि वो तीनों को अलग अलग ही ले जाने की व्यवस्था बनाए। तो पहली बात तो ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि अलग अलग रखने की कोशिश तो करे, मुश्किल
0: बिल्कुल
1: है,
0: कर सकते
1: चैलेंजिंग
0: हैं।
1: होता है,
0: हाँ
1: बट क्योंकि आदत नहीं पड़ी है, आदत में लाए, ठीक है। और उसके बाद फिर खाद बनाने की जो पहल है, तो हमारा जितना भी सब्जी के छिकल है उससे कितनी सुंदर, सीमा जी और मेघा जी आपने कभी उपयोग करा है कि नहीं, बट
0: बिल्कुल
1: इतनी
0: किया
1: सुंदर
0: है।
1: खाद
0: नहीं मैंने
1: बनती है।
0: कोशिश की
1: हाँ
0: ही खाद बनाने की, थोड़ा सा सफल हुई, लेकिन हाँ थोड़े से कई बार उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं तो ऐसे में लगता है कि छुआ कैसे जाए, तो ऐसे में ग्लव्स पहन के हम इस्तेमाल करते हैं उनका, लेकिन कोशिश मैंने की। देखिए
1: तो वही मैं बता रही हूँ कि मिशन लाइफ बार बार इस बात के ऊपर जोर देता है कि हम खुद से करें, प्रयास करें।

0: तो बदलाव आएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि खाद बना के आप अपने ही घर में, छोटे से आंगन में, घर आंगन को सुंदर सब्जियां, फल फूल आप गिफ्ट करिए, फिर अच्छी अच्छी ताजी सब्जियां गिफ्ट करिए, और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और संसाधन भी बचेंगे, पानी की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि तो सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीवन का ताना बाना भी वैसा ही है और हमारे मिशन लाइफ भी वैसा ही है। तो ये जो सारे 7 बिंदु हैं, सारी कनेक्टेड हैं, कोई थीम अपने आप में इंडिविजुअल आइसोलेटेड थीम नहीं है, सब मिलजुल के एक स्वस्थ स्वच्छ जीवन शैली की तरफ हमें बार बार धक्का देते हैं कि आप जाइए और इसको अपनाना शुरू करिए।
1: अब थोड़ा सा गीत संगीत और कर लेते हैं क्यों
0: हाँ
1: मेघा, है
0: बिल्कुल,
1: ना? तो अब आप कौन सा गाना सुनना
0: मुझे
1: चाहेंगी?
0: लगता है हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और एक सुंदर जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा गाना है, आपने सुना होगा, लव यू
1: चलिए
0: जिंदगी।
1: सुनवा देते हैं मेघा इनको,
0: आइए
1: लव यू
0: सुन लव यू
1: जिंदगी।
0: जिंदगी।

0: अनुराधा जी, बातें तो आपने ढेर सारी बताई, अब चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी?
1: तो मिशन लाइफ में चाहूंगी हमारे सभी श्रोतागण इस बात का ध्यान रखें कि क्लाइमेट चेंज होने नहीं वाला है, हो रहा है, राइट? तो एक्शन हमें लेना है, कुछ आज से ही हमें सारी बातों को अपने जीवन में उतारना है। और कबीरदास जी का फिर से मुझे दोहा, मुझे कबीरदास जी बहुत पसंद है, उनकी सारी जो बातें हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत बहुत लागू होती हैं। तो प्यारा सा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करेगो कब। तो हम टालते ना रहें चीजों को, प्रलय हो रही है, हम देख रहे हैं सारी चीजें किस तरह से हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी नदियां दूषित हो रही है, हमारे तालाब सरोवर सब खत्म होते जा रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, फिर भी हम जग नहीं पा रहे हैं, हम सचेत नहीं हो पा रहे। तो बस करने की इच्छा होनी चाहिए।
2: अनुराधा जी, आपने अपने सुझावों और अपने टिप्स के जरिए तो हमें प्रकृति की ओर आप ले ही गई हैं, तो क्यों ना हमें गीत संगीत के माध्यम से भी प्रकृति की ओर ले जाएं?
1: बिल्कुल, कैलाश खेर जी का बहुत ही सुंदर सा एक गीत है, आप सबने सुना होगा।
2: हाँ?
1: एक सोच है जागी, जागी प्रकृति के लिए।
0: वाह, तो ये तो बहुत प्यारा गाना आप बता रही हैं
1: जी। तो मिशन लाइफ भी एक सोच है और उस सोच को हमें अमल करना है।
2: तो आइए सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। इस मिशन लाइफ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए।
1: आकाशवाणी लखनऊ को सबसे पहले मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी कि एक अवसर दिया कि हम लोग मिलके चर्चा कर सके। तो सीमा जी और मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करते हुए।
2: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
0: सीमा जी, हाँ, आपको कैसी लगी अनुराधा जी की बातें?
2: मुझे तो लगता है मैं सुनते सुनते इनको खो गई और बहुत सारे चित्र मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, क्या करें और क्या ना करें कि जिससे कि हमारी प्रगति बची रहे, बहुत जरूरी है। मेघा, तो मुझे लगता है छोटे छोटे प्रयास बदलाव ला सकते हैं।
0: और ये धरती भी हमें कितना कुछ देती है, बस मांगती है थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा सा प्यार।
2: निश्चय ही हम लोग अपने में भी बदलाव लाएंगे
0: और एक एक कदम तो जरूर उठाएंगे अपनी प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए और इसको
2: बचाने के लिए सखिया भी सुन रही थी हेलो अपराजिता में बातचीत। विषय था क्लाइमेट एक्शन, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। गेस्ट थी हमारी अनुराधा गुप्ता जी और बात कर रहे थे हम दोनों, यानी कि मेघा और सीमा अग्रवाल। और मेघा, उम्मीद करते हैं सखियों को हमारा आज का कार्यक्रम बहुत सूचना देने वाला, बहुत समझ देने वाला लगा होगा।
0: बिल्कुल, है ना? लेकिन

0: देखिए ना, अब वक्त हो चला है विदा लेने का अपनी सखियों से, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है,
1: हाँ,
0: तो सखियों से लेते हैं विदा।
1: और अपनी सखियों से पुनः किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, पुनः भेंट करेंगे कुछ नए गानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और इसी बात के साथ मैं सीमा अग्रवाल,
0: और मैं मेघा। तो सखियों, दीजिए हमें अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज गीतों का ये सफर आप तय करेंगे मेरे यानी पूनम शर्मा के संग।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम था गीत गाता चल। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी ग्राम व पोस्ट ललहुआ ज़िला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

हमारे पास आई थी, ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी नरहरपुर सफीपुर जिला उन्नाव से कुलदीप तिवारी, किरण लक्ष्मी राहुल मीठी मोहिनी और उनके पूरे परिवार की तरफ से, और साथ ही में बड़ा परहा आलमबाग लखनऊ से इसी गीत की फरमाइश की थी विजय कुमार शर्मा, नताशा शर्मा छवि और लवी ने।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी ग्राम लसूडिया, पता तहसील नरसिंहगढ़, ज़िला रायगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णो दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, इन सभी की फरमाइश पर अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में कभी कभी फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म का ये गीत। और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 67 से मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था दिल है तुम्हारा और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी ग्राम टिकौली पोस्ट अतरिया सिधौली सीतापुर से पूनम गुप्ता मोनिका गुप्ता यशी गुप्ता आश्वी गुप्ता की। और इसी गीत को सुनना चाहा था कानपुर से अनिका शर्मा प्रतीक विष्णुकांत शर्मा अखिल शर्मा और उनके पूरे परिवार ने। और इसी गीत के साथ ही समाप्त करने की दीजिए अनुमति पूनम शर्मा को। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का

0: परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की

एक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन

0: निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडिया वीप 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राकेश प्रताप सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय है

0: उन्नत बीज का चुनाव, भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं, जहां खरीफ उत्पादन की योजना बनाए हैं तो अनाज वाली फसलों के अलावा दलहनी और तिलहनी फसलों का आप चुनाव करेंगे। जो भी उत्पादन की योजना है उसके हिसाब से उन्नत बीज का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उन्नत बीज का इस्तेमाल करेंगे तभी आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो उन्नत बीज का चुनाव कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं IFFDC लखनऊ से कनिष्ठ प्रबंधक बीज गुणवत्ता RP सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि उन्नत बीज के चुनाव की बात करें हम लोग, उसके पहले बीज है क्या, किसान भाइयों बहनों को समझाएं।
2: किसान भाइयों और बहनों सबको नमस्कार। जैसा कि उन्नत बीज चुनाव की बात डॉक्टर साहब अभी कर रहे हैं, बीज सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीज क्या है। बीज एक ऐसा परिपक्व भ्रूण है जो अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। बीज की गुणवत्ता, उसकी भौतिक शुद्धता, उसकी अनुवांशिक शुद्धता, उसमें ओज कितना है और उसकी अंकुरण क्षमता क्या है, उस पर निर्भर करता है। एक उच्च गुणवत्ता वाला बीज का अगर प्रयोग किसान भाई करते हैं तो उसमें 15-20% उपज बढ़ने की संभावना रहती है। कृषि में जितने भी कृषि आदानों का प्रयोग होता है उसमें बीज ही सबसे महत्वपूर्ण कृषि आदान है। अगर बीज की विशेषता की बात करेंगे, बीज चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं किसान भाइयों, तो बीज के चुनाव के समय बीज की विशेषता को विशेष रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए। उन्नत बीज की विशेषताएं, जैसे बीज में जो नमी का प्रतिशत है वो मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर गेहूं का बीज है तो उसमें अधिकतम 12% ही नमी का प्रतिशत हो। खरीफ का समय चल रहा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल धान ही है, तो धान में जो अधिकतम नमी प्रतिशत है वो 13 होनी चाहिए। बीज जिसका हम चुनाव कर रहे हैं किसान भाई, आप सब जो चुनाव कर रहे हैं बीज का, उसमें वो बीज कीट और रोगों से मुक्त हो, बीज में खरपतवार के दाने ना हो, बीज ऐसा हो जिसमें मिक्सिंग ना हो। आज जो समय है इस समय मिक्सिंग की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े हैं किसान भाइयों, बीज उत्पादन में इस समय जब से कटाई कंबाइन के माध्यम से करी गई है, हम लोग बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसानों को बहुत सचेत करते हैं कि जो भी आप इसकी कटाई कराइए, कंबाइन की साफ सफाई करने के बाद कटाई कराएं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो हम लोगों का किसानों को ये सुझाव रहता है कि जो भी बीज उत्पादन का प्रक्षेत्र है उसके किनारे किनारे एक बार उस कंबाइन को घुमाकर जो 1-2 क्विंटल बीज उसमें निकले उसको खाने के लिए उपयोग करें, बाकी फिर कंबाइन से हार्वेस्टिंग करवाए।
1: यानी जो बॉर्डर की फसल है उसका अनाज के रूप में उपयोग हो और जो बीज का हिस्सा है वो बीज में उपयोग,
2: वो बीज में, इससे मिक्सिंग की जो समस्या आ रही उससे निजात मिलेगी।
1: सिंह साहब, ये बताएं कि उन्नत बीज के चुनाव की बात चल रही है तो बीज कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी बता दें।
2: किसान भाइयों, बीज हमारे 5 प्रकार के जो इस समय प्रचलित हैं। सबसे पहला बीज हमारा न्यूक्लियस सीड होता है, जो कृषि विश्वविद्यालयों में हमारे वैज्ञानिकों के सघन देखरेख में तैयार किया जाता है। इसकी शुद्धता 100% होती है, इसमें कहीं कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ये बीज की हमारी पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी हमारी आती है ब्रीडर सीड की, ये भी कृषि विश्वविद्यालयों में प्लांट ब्रीडर द्वारा उनकी सघन देखरेख में तैयार किया जाता है। ये बीज की दूसरी श्रेणी है और इस पे जो टैग लगता है वो सुनहले रंग का टैग लगता है। तीसरी श्रेणी हमारी आधारी बीज है, जो कि ब्रीडर सीड से आधारी बीज तैयार किया जाता है। इसमें अंतर ये है कि आधारी बीज में जो संस्था बीज का उत्पादन करती है उसके अलावा इसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था भी इन्वॉल्व रहती है। इसमें एक लेबल उस संस्था का लगता है जो बीज उत्पादन कार्यक्रम करती है, दूसरा बीज प्रमाणीकरण का टैग लगता है। इसमें जो टैग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद हमारी श्रेणी आती है, अगली श्रेणी प्रमाणित बीज,
1: यानी सर्टिफाइड सीड।
2: जो सर्टिफाइड सीड है यही किसानों को अपनी खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आधारी बीज जो फाउंडेशन सीड की बात कर रहे हैं

0: उसी से तैयार होता है और सर्टिफाइड सीड में भी बीज प्रमाणीकरण संस्था और उत्पादक संस्था जैसे IFBCC बीज का
1: उत्पादन या किसान भाई सीधे भी कर सकते हैं।
0: किसान भाई आधारित बीज से प्रमाणित बीज का उत्पादन सीधे भी कर सकते हैं
1: बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख
0: में। तो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में इसमें हमारे एक टैग उस संस्था का लगेगा जो बीज उत्पादन का कार्य कर रही है, दूसरी बीज प्रमाणीकरण संस्था का लगता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था का जो टैग लगता है वो सफेद कलर का होता है।
1: आजकल सत्यापित बीज ढेर सारे दिखते हैं बाजार में, ये क्या है सिंह साहब?
0: ये डॉक्टर साहब सत्यापित बीज हमारा, इसमें कोई भी प्रमाणीकरण संस्था इन्वॉल्व नहीं होती है। ये जो भी एजेंसी बीज उत्पादन का कार्य करती हैं वो अपने रिस्क पर, वो उनके टेस्ट करने के बाद
1: यानी उनके विश्वास पर,
0: उनके विश्वास पे वो उस लेबल पे उनका लेबल लगता है उस पे सत्यापित बीज पे जिसको TL बोलते हैं, और उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो ये बीज है जो इसका मानक उस पे लेबल पे है वो मानक इसमें है। लेकिन किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि सबसे पहले वो प्रमाणित बीज का ही, अगर उनको प्रमाणित बीज उपलब्ध हो रहा है तो प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, इसलिए कि वहाँ पर संस्था भी उसमें इन्वॉल्व है और दूसरा प्रमाणीकरण संस्था भी इन्वॉल्व है।
1: उन्नत बीज के चुनाव में कुछ जो विशेष बातें ध्यान में रखनी है उनके बारे में बताएं।
0: किसान भाइयों बहनों, उन्नत बीज के चुनाव की बात जहाँ तक आती है उसमें फसल की उपज का बहुत ध्यान रहता है। अगर बीज का सही चयन हो गया तो फसल की उपज अच्छी आएगी। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम कहाँ पे बीज का प्रयोग कर रहे हैं,
1: किस जलवायु में,
0: कर रहे हैं,
1: किस तरह की मिट्टी में,
0: किस तरह के हो रहा है, फसल चक्र के आधार पे उस बीज का हम वो कर रहे हैं, कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बीज की कैसी है उसको ध्यान में रखते हैं, और उपज सबसे महत्वपूर्ण उपज कि जो हम फसल या जो बीज प्रजाति का चयन कर रहे हैं
1: उसकी
0: पैदावार क्या है, तो उपज का ध्यान रखते हैं। और जैसा कि अभी पहले भी किसान भाइयों बहनों आप लोगों से चर्चा हुई कि प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, उसकी गुणवत्ता प्रमाणन क्या है, जो बीज हम उपयोग करने जा रहे हैं उसका गुणवत्ता प्रमाणन क्या है उसका भी ध्यान रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में बाजार मांग का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी अभी जैसे कई हाइब्रिड प्रजातियां हैं जिनका मार्केट में विपणन उस तरह से नहीं हो पाता है, किसान भाइयों को उस तरह का रेट नहीं मिलता है, तो ऐसे बीज या प्रजाति का चयन किया जाए कि जो मार्केट में आसानी से बिके, उसकी उपलब्धता, वो मांग हो किसानों के बीच में मार्केट में, तो इस तरह के बाजार मांग के आधार पर भी बीज का चयन करना चाहिए।
1: उन्नत बीज के चुनाव की बात चल रही है तो खरीफ में जो मुख्य फसलें हैं उनकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जिनका चुनाव करें किसान भाई बहन?
0: किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि वो अपने एरिया के आधार पे, कि उनका जो क्षेत्र है वो असिंचित है या उनका सिंचित क्षेत्र है, अगर असिंचित क्षेत्र में धान की फसल ले रहे हैं, धान उगा रहे हैं, तो कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसका चयन किसान भाई कर सकते हैं। NDR 97 है, NDR 118 है, EM2 1010 है, शुष्क सम्राट है, ये कम समय में पकती हैं,
1: यानी 100 से 120 दिन
0: में पकती हैं और इसमें उपज भी ठीक ठाक होती है। दूसरा, सिंचित भूमि जहाँ पे पानी की सुविधा है उनके लिए NDR 2064 है, NDR 2065 है, NDR 2026 है, पंत 4 है, इस तरह की प्रजातियां सिंचित भूमि में किसान भाई,
1: जहाँ सुगंधित धान की जरूरत है,
0: जहाँ पे सुगंधित धान की जरूरत है तो मालवी सुगंध 105 है, नरेन सुगंधा टाइप 3 है, पूसा बासमती 1 है, तो इस तरह की प्रजातियों का किसान भाई चयन कर सकते हैं।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे उन्नत बीज के चुनाव के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके IFBCC लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाइयों बहनों, मेरा मोबाइल नंबर 93114214715।
1: RP सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और उन्नत बीज का चुनाव इस समय कैसे करें खरीफ अभियान के लिए किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उन्नत बीज का चुनाव राकेश प्रताप सिंह से की गई भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं।

लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए कुछ अवधी लोकगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं बधावा।

लोकमाद्री कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं निर्गुण।

लोकमादरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं वेंद्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नपटा।

0: लोकमादरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

और आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम सतरंगी दुनिया अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो बस ऐसे ही

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं और हम हाजिर हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा।

0: कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:05। ये वक्त हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:45 से। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे जल प्रदूषण, स्वास्थ्य और जन जागरूकता, इस विषय पर आधारित कार्यक्रम। लोकायतन कार्यक्रम होगा शाम 6:30 से। आज के कार्यक्रम में वार्ता का विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, वार्ताकार डॉक्टर जयशंकर राय। खेती किसानी के कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सुनिएगा कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। आलेख एवं वाचन राजवीर रतन का, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 से। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा टॉक, विषय है मिस्टिक वुमेन इन इंडिया, अक्का महादेवी और वार्ताकार डॉक्टर शीबा राकेश। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे प्रवीण कुमार शुक्ला का काव्य पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा कृष्ण चंद्र गुप्ता का राग जोग में विचित्र वीणा वादन। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर आप सुनेंगे उस्ताद सादत हुसैन खान की गाई नात एवं कवालियां। श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्र पत्रिका।

युवा भारती, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 10 बजे से, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृषि चर्चा, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रातः 6:05 पर। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा जायद में हरी खाद उत्पादन, इस विषय पर आधारित कार्यक्रम आलेख एवं वाचन डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी के। सुविचार आप सुनते हैं प्रातः 6:10 पर, और श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण होता है प्रातः 6:45 से। स्वास्थ्य चर्चा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7 से। कल के कार्यक्रम में सुनेगा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अनार, आलेख एवं वाचन नीना सोनकर के। विविधा कार्यक्रम में कल सवेरे 7:10 पर सुनेगा विश्व आलू दिवस पर आधारित कार्यक्रम। आज सुबह ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:31 से। जिले की हलचल सुनिएगा सवेरे 9:15 पर, और उर्दू कार्यक्रम के तहत सवेरे 9:30 से आप समाप्त फरमाइएगा गुफ्तगू। मौजू होगा उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी आतिया पी। घर आंगन कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 1:15 पर, और विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा सनई ढेचा की उन्नत खेती, इस विषय पर भेंटवार्ता डॉक्टर देवेश पाठक से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत आपको सुनवाएंगे। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनिएगा कल शाम 5:10 पर, और नई उड़ान कार्यक्रम में कल शाम 5:45 पर आप सुनेंगे व्यवसायी योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण उद्यमी अनुभव, इस विषय पर आधारित ओबी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बदलता गांव, इस विषय पर अजीत प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। और खेती किसानी के कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन, डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान जगत, कल के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे रमेश चंद्र विशेष सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता, विषय होगा कैसे तकनीक और अनुसंधान से सवर रहा है प्रदेश। शाम में अवध, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:45 पर, और रात 8 हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास, सुरेंद्र अग्निहोत्री वार्ताकार होंगे, और ये वार्ता आप सुनेंगे कल रात 8 से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर सुनिएगा स्वाति रिजवी की गाई गजलें। श्रोताओं, ये थे आज के शेष और कल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:10। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मांडवी, लेकर हाजिर हो गई हूँ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का पिटारा प्रोग्राम युवा तरंग। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो इंसान एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी भी छू सकता है, लेकिन आज का युवा सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयां नापने का सपना नहीं देखता, वो अपनी पहचान बनाने, दुनिया बदलने और कुछ नया दिखाने का सपना देखता है। हर दौर का युवा अपने समय की तस्वीर होता है और आज का युवा आइडिया से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, ड्रीम से भरा हुआ है। कोई अपने स्टार्टअप को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, कोई म्यूजिक में नाम कमाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में देश का झंडा ऊंचा करना चाहता है, तो कोई साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य बदल देना चाहता है। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, पर्पस खोज रहा है। वो सिर्फ सक्सेस ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, और शायद यही वजह है कि आज सपनों की ऊंचाइयां पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं।

लेकिन दोस्तों हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं आपसे बात करें एवरेस्ट की। हर ऊंचाई जितनी खूबसूरत दिखती है और वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही कठिन भी होता है, क्योंकि सपनों के साथ आती हैं जिम्मेदारियां, एम्बिशंस के साथ आता है प्रेशर और उम्मीदों के साथ आता है स्ट्रगल। आज का युवा अपॉर्चुनिटीज के बीच भी उलझा हुआ है। एक तरफ कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की चमक कई बार लोगों को ये महसूस करा देती है कि बाकी सब उनसे आगे निकल चुके हैं। कई युवा अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कोई अपने पैशन और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ऐसे भी हैं जो बाहर से तो कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट से लड़ रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ है जो युवाओं को सबसे अलग बनाती है, और वो है उनकी कोशिश करने की हिम्मत, बार बार गिरकर उठने की हिम्मत, फेलियर के बाद भी सपने देखने की हिम्मत और अपने लिए नई राह बनाने की हिम्मत। शायद इसलिए कहा जाता है कि असली एवरेस्ट बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि वो डर है जिसे इंसान अपने अंदर हर दिन हराता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे युवाओं के सपनों की, उनके एम्बिशंस की, उनके संघर्षों की और अचीवमेंट्स की, और उन चुनौतियों की जिन्हें पार करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस खूबसूरत से नॉस्टैल्जिक से गीत के साथ।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों आज का यूथ पहले से कहीं ज्यादा अवेयर हो चुका है। अवेयर है और एम्बिशियस है ना। अब सपने सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं है। आज का युवा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, स्टार्टअप फाउंडर भी, रिसर्चर भी और सोशल इन्फ्लुएंसर भी। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब छोटे शहरों के युवा भी बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच रहे हैं और अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े सपनों के साथ बड़ी मेहनत और पेशेंस भी चाहिए होता है। हर सपना खूबसूरत होता है लेकिन उसे पूरा करने का सफर हमेशा आसान नहीं होता। आज का युवा कई तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है। कैरियर प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सोशल मीडिया का कंपैरिजन और लोग क्या कहेंगे जैसी बातें कई बार कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देती हैं। कई युवा अपने सपनों और परिवार की एक्सपेक्टेशंस जो होती ना उनके बीच फंस जाते हैं और कई बार फेलियर का डर उन्हें शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है कि मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं बल्कि हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाने आती हैं। तो दोस्तों आगे भी हम आपसे इस तरीके से बातें करेंगे लेकिन अभी हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता जिसका विषय है डिजिटल युग में संस्कृत का भविष्य। वार्ताकार हैं सार्थक द्विवेदी जो कि वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में शोध के छात्र हैं। आइए सुनते हैं।
9: नमस्ते, मेरा नाम सार्थक द्विवेदी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में शोध का छात्र हूं। आज मैं आप सबसे डिजिटल युग में संस्कृत के भविष्य पर चर्चा करने जा रहा हूं। जब हम संस्कृत का नाम लेते हैं तो हमारे सामने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, योग और दर्शन की एक लंबी परंपरा खड़ी हो जाती है। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। अक्सर संस्कृत को केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित कर दिया जाता है लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं रही बल्कि ये साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, फिलोसफी और आर्ट्स जैसे अनेक क्षेत्रों की भाषा की आधार भाषा रही है। प्राचीन भारत में गणित, चिकित्सा,

0: खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र का जो विकास हुआ उसकी जड़ें संस्कृत में ही मिलती हैं। आज हम जब 21वीं सदी के डिजिटल युग में खड़े हैं तो यह प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में संस्कृत का क्या स्थान है। क्या संस्कृत केवल अतीत की भाषा बनकर रह जाएगी या इसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल है। वास्तव में डिजिटल युग संस्कृत के लिए संकट नहीं बल्कि एक नई संभावना लेकर आया है। डिजिटल युग का अर्थ है इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का युग। आज ज्ञान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकता है और यही बात संस्कृत के भविष्य को नई दिशा देती है। पहले समय में संस्कृत के ग्रंथ ताड़पत्रों और हस्तलिखित पांडुलिपियों में सुरक्षित रहते थे। समय के साथ अनेक अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए, कुछ आग से, कुछ नमी से, कुछ उपेक्षा के कारण। लेकिन आज डिजिटल तकनीक ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। आज हजारों संस्कृत ग्रंथ डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सुरक्षित किए जा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंटरनेट आर्काइव, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वे ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिन्हें पहले केवल चुनिंदा विद्वान ही पढ़ पाते थे। अब कोई भी छात्र, शोधकर्ता या संस्कृत प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने से इन ग्रंथों तक पहुंच सकता है। ये केवल संरक्षण नहीं है बल्कि ज्ञान का लोकतांत्रिकरण है। डिजिटल युग ने संस्कृत के अध्ययन को भी सरल बना दिया है। पहले संस्कृत सीखना कठिन माना जाता था क्योंकि अच्छे शिक्षक, पुस्तकें और संसाधन हर जगह उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन आज ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल ऐप, ई बुक्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से संस्कृत सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। आज बच्चे खेल खेल में संस्कृत के शब्द सीख पा रहे हैं। आज युवा वर्ग संस्कृत श्लोकों का अर्थ मोबाइल ऐप्स की मदद से समझ पा रहा है। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी भाषा का भविष्य नई पीढ़ी से जुड़ा होता है। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की सहायता से आज हम कठिन से कठिन ज्ञान कुछ ही क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में उपलब्ध विशाल ज्ञान भंडार को भी अब तकनीक की सहायता से सरलता से समझा और साझा किया जा सकता है। आज संस्कृत ग्रंथों का ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में। इससे पूरी दुनिया संस्कृत के ज्ञान से जुड़ रही है। ये प्रक्रिया संस्कृत को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अनेक वैज्ञानिकों और भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए अत्यंत युक्त भाषा है। इसका कारण इसकी वैज्ञानिक और तार्किक संरचना है। संस्कृत का व्याकरण अत्यंत व्यवस्थित है। पाणिनी का व्याकरण आज भी दुनिया का सबसे सटीक व्याकरण माना जाता है। संस्कृत में शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते हैं, उनमें भ्रम की संभावना बहुत कम रहती है। संस्कृत की एक बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। जहां अन्य भाषाओं में किसी भाव को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है, वहीं संस्कृत में एक ही शब्द पूरा अर्थ स्पष्ट करा देता है। उदाहरण के लिए हिंदी में हम कहते हैं कमरे में, ये दो शब्द हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इन द रूम, ये तीन शब्द हैं। लेकिन संस्कृत में केवल एक ही शब्द कक्षे पूरा अर्थ प्रकट कर देता है। इसी स्पष्टता के कारण आज संस्कृत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग से जोड़ा जा रहा है। आज वैज्ञानिक यह शोध कर रहे हैं कि संस्कृत का व्याकरण कंप्यूटर को भाषा समझाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। डिजिटल युग में संस्कृत केवल पढ़ने की भाषा नहीं रह गई है बल्कि ये रिसर्च और इनोवेशन का विषय बन रही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत और टेक्नोलॉजी को जोड़कर नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत का स्वरूप बदल रहा है। अब संस्कृत को केवल रटने की भाषा नहीं बल्कि समझने और सोचने की भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत छात्रों को तार्किक सोच, स्पष्ट अभिव्यक्ति और अनुशासन सिखाती है। आज आवश्यकता है कि हम संस्कृत को अतीत के गौरव तक सीमित ना रखें, हमें इसे वर्तमान और भविष्य से जोड़ना होगा। संस्कृत तभी जीवित रहेगी जब वह समय के साथ आगे बढ़ेगी। डिजिटल युग ने हमें यह अवसर दिया है कि हम संस्कृत को नई तकनीक, नई सोच और नए मंच से जोड़ सकें। जब संस्कृत और टेक्नोलॉजी साथ चलते हैं तब परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर संतुलन बनता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि डिजिटल युग में संस्कृत का भविष्य सुरक्षित ही नहीं बल्कि उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा हुआ है। संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं है, ये वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संभावना भी है। अगर हम संस्कृत को समझें, अपनाएं और तकनीक से जोड़ें, तो यह भाषा आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, विज्ञान और मानवता का एक मजबूत आधार बन सकती है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी एक वार्ता जिसका विषय था डिजिटल युग में संस्कृत का भविष्य। वार्ताकार थे सार्थक।

हम लोग आज के समय में एक बहुत ज़रूरी मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ का। हर समय परफेक्ट दिखने की रेस, सोशल मीडिया प्रेशर और लगातार कंपैरिजन ने कई युवाओं को अंदर से थका दिया है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी की सफलता का समय अलग होता है। कभी कभी थोड़ा रुकना, खुद को समझाना और अपने मन की बात किसी अपने से शेयर करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सपनों तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, एक हेल्दी माइंड भी ज़रूरी होता है। और दोस्तों, आगे हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनेंगे ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, असली एवरेस्ट सिर्फ बर्फ से ढका पहाड़ नहीं, असली एवरेस्ट वो डर है जिसे हम हर दिन हराते हैं। वो फेलियर है जिससे हम दोबारा उठना सीखते हैं। वो स्ट्रगल है जो हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। हम युवाओं की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम सपने देखना नहीं छोड़ते। और जब कोई युवा अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसकी उड़ान सच में एवरेस्ट से भी आगे चली जाती है। तो दोस्तों, बात हम करते रहेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि हमारा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का पिटारा है, तो एंटरटेनमेंट साथ साथ चलता रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एक और गाना।

दोस्तों अपने दिल को उदास मत कीजिए, क्योंकि मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। मंजिलों का क्या है, कभी देर से तो कभी जल्दी, किसी को देर से मिलती है तो किसी को जल्दी, लेकिन मिल तो जाती है अगर हम उस पर तत्परता से लगे रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम का संदेश बस इतना सही है कि सपने देखिए, मेहनत कीजिए, फेलियर से सीखिए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव किसी एक छोटे से सपने से ही शुरू होता है। और याद रखिए कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो सकती है, लेकिन इंसान के सपनों की ऊंचाई उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मांडवी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम युवा तरंग। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय है शाम के 5:45 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

आकाशवाणी के कार्यक्रम नई उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी आनंद मिश्रा। और साथियों, मरहूम बशीर बद्र साहब का एक बड़ा ही लोकप्रिय शेर है कि कागज़ का ये लिबास चिरागों के शहर में, कागज़ का ये लिबास चिरागों के शहर में, ज़रा संभल संभल के चलो, तुम नशे में हो। वैसे बशीर बद्र साहब ने इस शेर में कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा अहम जो है, हमारा जो अहंकार है, वो इतना बड़ा ना हो जाए कि जिससे आपको नुकसान हो जाए, और ये जो नशा है अहंकार का, इससे दूर रहना चाहिए। साथियों, जो अहंकार का नशा है, जो अहम का नशा है, उससे तो हम दूर रह सकते हैं, लेकिन एक और नशा है जिसमें अगर हम फंस गए तो वाकई में हमारे लिए बहुत नुकसान हो सकता है, और वो नशा है गुटखा पान मसाले का। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस नशे का शिकार होते जा रहे हैं, और ख़ासकर हमारे जो श्रमिक साथी हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। हम अहम के नशे से

0: दूर हो सकते हैं अच्छे विचारों से, लेकिन इस नशे से कैसे दूर हों, क्योंकि इसमें एक शिकायत हमेशा से रहती है कि लत लग गई है। अब इस लत को हम कैसे दूर करें, और ये लत छूटती नहीं है, तो ये लत कैसे छूटेगी, कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम आपको इस भेंटवार्ता में उन सारे जो सवाल हैं उनका जो निदान है वो आपको मिलेगा इस भेंटवार्ता के अंतर्गत, जिसका विषय है व्यावसायिक श्रमिकों में कैंसर का उच्च जोखिम और निवारक उपाय। वार्ताकार हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग KGMU लखनऊ, और भेंटकर्ता हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं, आज आकाशवाणी लखनऊ में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग जी को। और आज राजीव गर्ग जी ये बताएंगे कि श्रमिकों को क्या समस्याएं आती हैं कार्यस्थल पर। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद नीना जी।
1: डॉक्टर साहब, हमारी आज की चर्चा का विषय है व्यवसायिक श्रमिकों में कैंसर का उच्च जोखिम और निवारक उपाय। क्योंकि हम बात आज सिर्फ श्रमिकों की करेंगे, तो श्रमिकों में व्यवसायिक कैंसर एक गंभीर समस्या है। कार्यस्थल पर उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, रात में जगना है, क्योंकि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो एक तरह से कहा जाए कि हमारी देश की मैन पावर है, और जो बहनें भी हमारी लगातार में रात दिन काम करती हैं, तो उन्हें भी क्या दिक्कतें आती हैं, और जब दिक्कतें आती हैं तो वो क्या कुछ उसका उपाय ढूंढते हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि वो उपाय क्या अच्छा होता है या बुरा होता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारे भाई बहन श्रमिक हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, ईंट गारा उठाते हैं या रात रात भर जाकर शिफ्ट में काम करते हैं, उनका अक्सर कहना होता है कि बीड़ी या गुटखे के बिना शरीर की थकान नहीं मिटती और नींद नहीं भागती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में तंबाकू से थकान दूर होती है?
2: तो आपने सवाल पूछा है, हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो अपने वर्क प्लेस पर या काम के स्थल पर जो तंबाकू का सेवन, किसी भी रूप में मैं तंबाकू का सेवन कह रहा हूँ, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे गुटखा या खैनी के रूप में हो, उसका जो असर होता है या नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसका कारण क्या होता है, हमारे श्रमिक भाई ये समझ लें कि जो उसके अंदर जो एक निकोटीन नाम का जो एक जहर होता है, वही जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वही आपको एक भ्रमित या मृग मरीचिका में रखता है कि आपको लगता है कि आपका काम करने पर जो शरीर थक गया है या दिमाग थक गया है, उसको जो है तंबाकू का सेवन करने से जो चेतना आती है वो क्षणिक होती है
1: जी।
2: क्योंकि उसके बाद आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए तो उत्तेजना में आता है, पर उसके कुछ ही चंद मिनटों के बाद आपको दोबारा से जो है थकावट लगने लगती है। तो ये पूरी तरह से भ्रम है हमारे श्रमिक भाई बहनों में, जो बीड़ी सिगरेट या गुटखा लेने से उनको जो है शरीर में और या काम करने में तेजी आ जाती है और या उससे आराम मिलता है, तो वो कतई ना समझें, वो एक तरह का भ्रम है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग तंबाकू को या जो भी धूम्रपान है, इस तरह की कुछ भी चीजें हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे चैतन्यता आती है, सुस्ती भागती है। दरअसल न वो चैतन्यता आती है न सुस्ती भागती है, वो हमारे शरीर को खराब कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, अब जो दूसरा सवाल मेरा है वो ये है, कई बार काम की जगहों पर एक दूसरे को देखकर, मान लीजिए कोई अपने घर परिवार से गांव से आता है तो वो आता तो सही सलामत है, लेकिन कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है। दिन रात एक दूसरे के साथ रहना, और वो भी कार्यस्थल पर, ये भी नहीं कि हम उससे दूर बैठ सकें, क्योंकि हमने मजदूर वर्ग में जो हमारे भाई बहन हैं श्रमिक वर्ग, उनमें एक बात बहुत साझा देखी है कि वो एक दूसरे के दुख सुख में पूरी तरह से शामिल होते हैं, खुशियां भी मनाते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर। और जब वर्क प्लेस की बात आती है कार्यस्थल की, तो वहां पर जब मान लीजिए कोई एक बीड़ी पी रहा है, सुलगा रहा है, तो वो सोचता है कि अरे ये पी रहा है, तो वो कहता है ले भाई एक सूटा तू भी मार ले। तो ये क्या है, क्या इससे आदत पड़ती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या यहीं से शुरुआत होती है?
2: बिल्कुल, आपका जो ये सवाल है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तंबाकू का सेवन जो होता है, वो देखिए हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि कोई जो माता पिता तो अपने बच्चे को नहीं सिखाता है कि भाई ये तू ले

0: कोल्ड ड्रिंक है वो तो चलिए पेरेंट्स ला के देते हैं, पर तंबाकू का जो शुरुआत होती है जहां तक मेरा मानना है वो पीयर प्रेशर या दोस्तों या व्यवहारिक वहीं पे ही वर्क प्लेस में ही जाके शुरू होती है, चाहे वो छात्र जीवन हो या हमारे कोई भी कार्य का स्थल हो, वहीं पर से ही जो है ये शुरू होती है। और जो ये आपने बहुत अच्छा बात बताया कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है कि भाई तू भी सुट्टा मार ले, मैं मारता हूँ एक या दो सुट्टा मारने से, ऐसा कुछ नहीं होता, शुरुआत वहीं से होती है। और इसमें हमारे कार्यक्रम का श्रमिक भाइयों के लिए उद्देश्य यही है कि भाई जब अगर वो जानते रहेंगे कि तंबाकू किसी भी रूप में सबसे ज्यादा जो धरती पर मौजूद तत्वों में सबसे खराब एडिक्शन का समान माना जाता है, एडिक्शन माने कि जिसे मादक पदार्थों का सेवन लेने की लत जिसे कही जाती, कारण क्या है कि जैसे ही हम पहला कश लें या पहली बार हम तंबाकू सेवन करें, हमारे मुंह से लेकर के दिमाग तक ये चंद सेकंडों में, मिनटों में भी नहीं, चंद सेकंड, 7 से 10 सेकंड में इसका जो निकोटीन है हमारे दिमाग पर असर करता है। तो शुरू में तो लगता है कि हमारा दिमाग उत्तेजित हो गया, हमारी थकान मिट गई। आपको ये जरूर है कि आपको ना कहने की आदत होनी चाहिए, अगर आप इसको ना नहीं कह पाएंगे तो आप इसके चंगुल में जरूर फंस जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी ये समझाइए जो पीते हैं, जो आदमी सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, पर उसके धुएं से जो उसके साथ में बैठा आदमी है जो नहीं भी पी रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, मान लीजिए वो दोनों लोग जहां पे वो पी रहा था, एक इंसान पी रहा था दूसरे उसके साथ बैठा था, अब मान लीजिए दोनों उस जगह को छोड़ के चले गए, मान लीजिए आप जो है कहीं मकान कहीं बन रहा है उसमें आप इस तरह का खाने के समय आपने जो ये काम किया, उसके बाद तीसरा आदमी उस जगह पे आया कुछ और खाने पीने या सामान लेने के लिए, थोड़ा दूसरा काम करने के लिए आया, तो तंबाकू का जो धुएं का जो प्रकोप है वो उसको भी अपनी जद में ले लेगा, तो इस प्रकार का नुकसान होता है। तो मेरी तो श्रमिकों भाइयों आपसे एक ही गुजारिश होगी कि जब भी आप कोई ऑफर करे कि भाई ये ले ले, तो आप उसको ना कहना सीखिए कि आपके लिए आपका शरीर सबसे बड़ी जमा पूंजी है, आप अपने शरीर और उससे होने वाली कमाई को मत जो है जाया जाने दिए, उसको धुएं मत उड़ाइए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। और कुछ हमारे श्रमिक भाई तो ऐसे हैं कि उनको लगता है कि सिगरेट और बीड़ी में अंतर है, और जो हम खैनी गुटखा खाते हैं ये भी अंतर है इसमें, क्योंकि सिगरेट तो नुकसान करती है लेकिन बीड़ी नुकसान नहीं करती, या फिर खैनी खा ली गुटखा खा लिया। तो ये बताइए, इन सब बातों में जिसमें सब में तंबाकू है, सब नुकसानदेह है, तो आप किस तरह इनको समझाएंगे?
0: जो सिगरेट है चाहे वो फिल्टर लगा हो चाहे बिना फिल्टर लगे वाला हो, नुकसान बराबर करता है। उसके बाद जो बीड़ी होती है, बीड़ी आसानी से नहीं जलती है, बीड़ी जलाने के लिए बराबर अगर आपने देखा हो महसूस किया हो, जो भाई पी रहे होंगे वो भी इस बात को अंतर महसूस कर सकते हैं कि बीड़ी को जलाए रखने के लिए बराबर आपको अंदर की तरफ जो है सांस खींचनी पड़ती है। तो जो बीड़ी और सिगरेट में अगर आप कंपेयर करेंगे, अंतर करेंगे, तो बीड़ी ज्यादा नुकसानदायक
1: जी
0: एज कम्पेयर टू सिगरेट। लेकिन मेरा ये कहने कतई मतलब नहीं है कि जो बीड़ी पी रहे हैं वो सिगरेट पीने लग जाए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। तो चाहे वो बीड़ी हो चाहे वो तंबाकू हो, अब कुछ लोग समझते हैं कि जो हम तंबाकू अगर खाने से हमारा बीड़ी या सिगरेट फूंकने से ही शरीर को नुकसान होता, तो यही नहीं, खाने के किसी भी तंबाकू का उपयोग किसी रूप में हो, यहाँ तक कि कुछ भाई बहन लोग जो हैं सुबह उठ के उसका मंजन भी करते हैं, गुल का मंजन का आप नाम सुने होंगे, तो वो भी आपके लिए जो है नुकसानदायक है। तो ये समझ लीजिए कि जो ये तंबाकू के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो तंबाकू किसी भी रूप में आपके लिए जो है वो कष्टकारी और नुकसानदायक है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए उनका शरीर ही सबसे बड़ी उनकी जमा पूंजी होती है, लेकिन तंबाकू खाने या पीने से उनके काम करने की जो ताकत है, उनकी क्षमता, वो उस पर असर पड़ता है, फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है, और जो उनकी रोज की कमाई है क्या उस पर भी आंच आ सकती है, ये बताइए।
0: डेफिनेटली, बिल्कुल पक्की तरह से, अगर हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, अगर आप देखें, अगर आप रोजाना का अंदाजा लगाएं, अगर 20-30 रुपए उन्होंने उस पर खर्च कर दिया, तो आज तो चलिए 20-30 रुपए उन्होंने अगर 500 रुपया कमाया, 30 रुपए उसमें खर्च कर दिया, तो उन्हें कुछ नहीं लगता है कि अरे चलो ये हमारा कमाया, लेकिन ये तो केवल एक सीधा उन्हें असर, ये वो नहीं समझ पा रहे होते हैं कि धीरे धीरे उनके शरीर की क्षमता, कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है।

0: वो काम पहले महीने में 20-24 दिन कर पाते थे, वो धीरे धीरे उनकी वो जो है शरीर का स्टेमिना कम होता चला जाएगा, अब वो दिन में 20 ही दिन दिहाड़ी कर पाएंगे, महीने के 20 दिन। तो धीरे धीरे उनकी जो है आय का जरिया, आमदनी, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसका सीधा असर उनके परिवार वालों पर पड़ता है, उनके बच्चों पर पड़ता है, और अगर खुदा न खास्ता कभी वो बीमार पड़ गए तब फिर ये समझ लीजिए कि वो उनकी जितनी भी जमा पूंजी है, शरीर तो जाएगा ही जाएगा, तो आप तन से भी जाएंगे और धन से भी जाएंगे, और आपका परिवार नुकसान में रहेगा तो आप मन से भी जाएंगे। तो ये एक ऐसा खराब नशा है कि तन मन धन सबको जो है ये प्रभावित करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, सभी जो पाउच आते हैं जो तंबाकू वाले होते हैं या कुछ भी होता है उसमें या डिब्बियों पे, सिगरेट की हो, बीड़ी की हो, सब पे लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ये बात अब इसलिए क्योंकि अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि मुंह का कैंसर या फेफड़ों की जो बीमारी होती है इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बात की कि ये कश लेते हैं, मान लीजिए किसी की आदत नहीं है लेकिन दिनों रात अगर किसी के साथ

0: में या डिब्बियों पे सिगरेट की हो, बीड़ी की हो, सब पे लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ये बात अब इसलिए क्योंकि अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि मुंह का कैंसर या फेफड़ों की जो बीमारी होती है इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बात की कि ये कश लेते हैं, मान लीजिए किसी की आदत नहीं है लेकिन दिनों रात अगर किसी के साथ इंसान रह रहा है तो उसकी आदतों को या फिर कहना चाहिए कि उसकी हर बातों का असर उसके पर पड़ता है। तो किस तरह से शुरुआती लक्षण तंबाकू का सेवन करने के बाद, चाहे वो सिगरेट बीड़ी के माध्यम से करें, चाहे मुंह में खा करके, चाहे खैनी गुटखा, सभी की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे कामगार भाई बहन अक्सर मामूली छाला या आम खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है मुंह में तो वो सोचते हैं कि अरे ऐसे ही निकल आया होगा, पेट साफ नहीं हुआ होगा। तो क्या शुरुआती लक्षण होंगे, किस तरह से वो पहचाने कि अब वो शुरुआत है, कि जहां पर बिल्कुल रुकना होगा, हर फिक्र को धुएं में नहीं उड़ाना है।
1: ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो तंबाकू का सेवन होता है दो रूप में ही होता है, या तो हम खाते हैं या तो उसको धुएं के जरिए सेवन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो तंबाकू का सेवन खाते हैं या अपने मुंह में रखते हैं, तो सबसे जो आपने पहले ही में बताया कि जो छाला है, अगर वो छाला ठीक नहीं हो रहा है और वहां पे शुरुआत में उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है, जो वो छाले जिसमें दर्द हो रहा होता है तो वो उसकी वजह दूसरी होती है, पर जो कैंसरस होते हैं, क्योंकि आपको ये बता दें तंबाकू के सेवन से लगभग 13.5 लाख लोग जो हैं हमारे जो है काल के मुंह में समा जाते हैं, मतलब 3700 परिवार प्रतिदिन जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मुंह के छाले का कैंसर उसकी जो अर्लीएस्ट है वो छाला होता है। खांसी और सांस से संबंधित, अगर फेफड़े संबंधित आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो खांसी और बलगम आना। पहले लोग सोचते हैं कि जो बलगम आता है उसको अगर हम बीड़ी या सिगरेट पी लेंगे तो बलगम आसानी से निकल जाएगा, पर बलगम और खांसी आना ये फेफड़े का हेल्थ का लक्षण नहीं है, ये फेफड़े की बीमारी का एक पहली दस्तक होती है। उसके बाद कहीं मरीज का दम फूलने लगता है, दम फूलना अगर शुरू हो गया तो ये मान लीजिए कि आपके फेफड़े को जो है काफ़ी हद तक आपने प्रभावित कर लिया है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके मुंह के छाले ठीक ना हो रहे हो, उसमें दर्द कम हो रहा हो, वो घाव बढ़ता जाए, चाहे गाल में हो, चाहे जबान के साइड में हो, चाहे गले के अंदर हो, तो वो कैंसर का लक्षण होता है। सांस के लक्षण आपने जैसे मैंने बताया वैसे ही होता है। तो इसको आप बहुत जल्दी और इसको इस पे ध्यान रखते हुए अपने को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ओरल हाइजीन हमने अधिकतर करके देखा है कि लोगों की जो मुंह को साफ करने में लोग मुंह में रखे रहते हैं और काम करते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको दांतों की समस्याएं हो जाती हैं। और तंबाकू ऐसा पदार्थ है जो शरीर के कोई अंग को नहीं छोड़ता, सभी अंगों को प्रभावित करता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से प्रभावित करता है शरीर के हर हिस्से को तंबाकू का सेवन, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो या फिर गुटखे के रूप में हो या फिर खैनी के रूप में हो। डॉक्टर साहब, एक बात और है जो ये तलब की बात तो हमारे श्रमिक भाई बहन कहना चाहूंगी, ये बात करते हैं कि भाई तलब है तो तलब बुरी है, ये तो आपको जान लेना चाहिए। जो आपका पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, आप घर परिवार में खाने पीने से, मतलब अच्छा जो भोजन है उससे वंचित रह जाएंगे और घर में एक विवाद का वातावरण भी रहेगा। अब जो सवाल है वो ये है कि तंबाकू की वजह से जब घर का मुखिया, यानी कि कहा जाए जो मेल मेंबर है, वो इंसान बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पर बहुत असर पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बीड़ी ये गुटखा छोड़ना बहुत जरूरी है, इससे बेचैनी किस तरह से आप उसकी दूर करेंगे, किस तरह से उसके गुस्से को कम करेंगे, किस तरह से ये कहते हैं कि हम कैसे छोड़ें, सिरदर्द होता है, लत लग गई है, आदत है, इसकी तलब है, जीवन चला जाए लेकिन ये खाना ही खाना है और आखिरी अगर कोई इच्छा होगी तो यही खाकर और पीकर मतलब दुनिया से कूच करें, मतलब एक तरह से तलब इस कदर दिलो दिमाग पर छा जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि रात में शिफ्ट में काम करने वाले इस तलब को रोकने के लिए तुरंत देसी उपाय क्या अपनाएं?
1: देखिए, तलब जो है वो एक शारीरिक, जो हमारे दिमाग में जो उत्तेजना पहुंचती है, जो ब्रेन हमारा जो दिमाग है जो उत्तेजित होता है जो, और उसको हम जैसे ही उसका लेवल निकोटीन का कम होता है तो हमको ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि

0: अब दोबारा से हमको लेना है। अब आपने सवाल पूछा तो हमारे भाई बहन इस तलब से कैसे अपना जो है उसको दबाएं, तो उस समय जिस समय ये होता है तो या तो अपने का काम में अपने मन को डाइवर्ट करें, क्योंकि जिससे कहते हैं अपना मन जो होता है वो शरीर में दिमाग से भी ऊपर स्थिति रखता है, मन से जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि आपको जब जिसकी तलब लगती कि भाई अब हमें पुड़िया खानी है, गुटखा खाना है, तो उस समय आप गुटखा ये वो ना खा करके भाई अपनी कोई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भुनी हुई सौंफ है, कुछ लौंग है, कुछ इलायची है, वो कुछ चीज़ें मुँह में आप रख लें तो जिससे कि वो जो है तलब उस समय के लिए थोड़ी दूर के लिए दूर हो जाएगी। हालांकि चिकित्सीय क्षेत्र में कुछ तलब को रोकने के लिए कुछ निकोटीन से संबंधित पदार्थ आते हैं, लेकिन उसको जो है लेने का एक तरीका होता है, पहले ज़्यादा मात्रा में कम, वो आप कहीं पे भी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जा करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको बताएं भारत सरकार ने तंबाकू को छुड़वाने के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी करी है, जिनको ये आदत लगी होती है उनके पास एक बहुत बढ़िया सा एक्सक्यूज था, साहब हम 20 साल से 30 साल से अब ले रहे हैं, अब का हुई अब के, तो मैं यहाँ पे ऐसे भ्रम में रहने वाले श्रोताओं को ये बता दूँ, तंबाकू जब से आप छोड़ते हैं तभी से ही आपको फायदा होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो इस बार की थीम क्या है?
0: इस बार की थीम है, अंग्रेजी में कहें तो अनमास्किंग द अपील, उसको अगर आप आम भाषा में कहें तो आकर्षण का पर्दाफाश। भाइयों बहनों आपने ये सुना होगा श्रोताओं कि जब आप इसके बारे में कहीं पिक्चर में देखें चाहे टीवी में देखें, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि उसके अंदर कोई आदमी जो है बहुत जो है अमीर बना जा रहा है, ये बड़े अमीरों के शौक होते हैं। यहाँ मैं किसी उत्पाद का नाम नहीं लूंगा, तो इस बार सरकार ने या और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बीड़ा उठाया है कि जो विज्ञापनों के पीछे फैला हुआ जो छल और कपट का जाल है जिससे वो अपने पदार्थ बेच रहे हैं, उसको जो है जनता के सामने लाया जाए कि भैया इससे आदमी कोई अमीर नहीं होता, ये अमीरों का शौक नहीं है, ये बेचारे गरीब ही जो है इसका सेवन करके और गरीब हुए जा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में ऐसे जो हमारे श्रमिक भाई हैं या बहने हैं उनके लिए सरकार द्वारा क्या मदद दी जा रही है, क्या मदद उपलब्ध है? टोल फ्री नंबर की भी आपने बात करी, कोई छोड़ना चाहता है तो किस तरह से छोड़े और क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को भाई एक ही मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप कसम खाइए कि अपने बच्चों के लिए पिता का साया नहीं उठने देंगे, और आज से ही तंबाकू को ना कहें, और कोई भी अगर इसको ऑफर करता है तो उसको ना करने की आदत डालें। अगर आप टोल फ्री नंबर की बात कर रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर है एक, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी जो नीना जी हैं वो इसको बता दें तो उससे जरा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 1-800-112-2356, एक बार उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो ही बताएं।
1: सभी श्रोताओं को हम एक बार फिर से नंबर बता दें, चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया है आपको, 1-800-112-2356 ये टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी इस पर फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का ये मतलब है कि वो जो फिल्मों में हमने गाने सुने, बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, या फिर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये सब गाने पर्दे पर अच्छे लगते हैं, ये सब बातें हमारे शायरों कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक अच्छे जीवन के लिए आप एक अच्छे नागरिक बनिए, अपना घर परिवार संभालिए और इस तंबाकू से तौबा कीजिए। डॉक्टर राजीव गर्ग जी, आप प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता जिसका विषय था व्यावसायिक श्रमिकों में कैंसर का उच्च जोखिम और निवारक उपाय। वार्ताकार थे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग और ये मेडिसिन विभाग के जीएमयू लखनऊ में कार्यरत हैं, और भेंटकर्ता थी नीना सोनकर।

0: साथियों, हम जानते हैं कि भारत हमारा गांव का देश है, यानी कह सकते हैं कि हम अक्सर कहते भी हैं कि हमारे देश की जो आत्मा है वो गांव और किसानों में बसती है। और देखिए, किसान दिन रात मेहनत करके हमारे देश के लिए अन्न पैदा करता है, लेकिन किसानों की भी तो बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, और उनको समझने वाला, उनके अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाने वाला बहुत कम ऐसा है जो उनके लिए अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन पूर्व में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स रहे जिनको हम आज याद कर रहे हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है, और वो हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने भारत के किसानों के लिए सच्चे हितैषी के रूप में उनकी आवाज़ को हमेशा से बढ़ चढ़ कर उठाया, उनकी समस्याओं को सामने लेकर आए और उनके निदान के लिए लगातार कार्य करते रहे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भी उनके विचारों को अपनाएं, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे देश की जो असली ताकत है वो गांव और किसान है। साथियों, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: साथियों, हम अक्सर कहते हैं ना कि अभी देखिए गांव की बात हो रही थी, किसानों की बात हो रही थी, श्रमिकों की बात हो रही थी, और जब हम ये सारी बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के केंद्र में एक बात हमेशा से रहती है। वो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, वो ये रहता है कि हमारे बीच में शांति व्यवस्था बनी रहे, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भाईचारा बना रहे और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनी रहे। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते ज़रूर हैं ऐसा, मगर होता नहीं है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से युद्ध की स्थिति दुनिया भर में अलग अलग देशों में बनी हुई है, और इसकी वजह से बहुत सारी क्षति भी होती है। लेकिन युद्ध के दौरान जो देश इसमें युद्ध में हैं, जो शामिल हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा हो सके, मानवता की रक्षा हो सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जो है अलग अलग देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कुछ सैनिक भेजता है, और उन्हीं सैनिकों को याद करने के लिए आज हम संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। और देखिए, इसमें बाकी देशों की तरह भारत का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान है इस मिशन में। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है। हमारे देश के हजारों जवानों ने वर्षों से और अभी भी लगातार दुनिया के कई देशों में शांति मिशन का हिस्सा रहे हैं, और लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी देने के लिए कि सुरक्षा पूरी तरीके से है आपकी, कोई ख़तरा नहीं है आपका, और ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी सेवाएं विदेशों में जाके, अलग अलग देशों में जाके, खासकर उन देशों में जहाँ पर युद्ध की स्थिति रहती है, दे रहे हैं। लेकिन कई बार भारतीय सैनिकों ने इसी मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है।

साथियों, आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे लिए हर रिश्ता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बशर्ते समय रहते हम उसकी अहमियत को समझें। फिलहाल हमारा आपसे अलविदा लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाते हैं इस वादे के साथ कि मिलेंगे फिर से किसी नए दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। संस्कृत समाचार अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भागेषु सामान्यात् अधिकम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति। केन्द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह अद्य अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था रूपेण उद्भूतमस्ति, तथा च वस्त्रोद्योग क्षेत्रे परिष्कारैः नीति समर्थनेन च द्रुतगत्या वृद्धिः साधिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां मन्त्रिणा कृष्णामण्डलस्य मल्लवल्ली औद्योगिक उद्याने मोहन स्पिनटेक समवायस्य भ्रमणं कृतम्। सः अवदत् यत् भारतस्य वस्त्र आपण मूल्यं सम्प्रति 15 लक्ष कोटि रूप्यकाणि अस्ति, तथा च 2030 वर्षपर्यन्तं 25 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकं कर्तुं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् अस्ति। कर्णाटकस्य राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः अद्य बेंगलुरुनगरे मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं स्वीकृत्य तत्कालीनेन प्रभावेण मन्त्रिमण्डलं विघटयत्। परञ्च यावत् कार्यवाहक मुख्यमन्त्रिरूपेण वैकल्पिक व्यवस्था न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्मिन् काले किमपि निर्णयं न स्वीकर्तुं सहैव अस्मिन् पदे यथावदेव भवितुम् आदिष्टम्। सिद्धारमैया वर्यः ह्यः लोकभवने स्वस्य त्यागपत्रं समर्पितवान् आसीत्। अन्त्यक्रीडावार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। विजेतृदलं रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह स्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 6:30 और इसी के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: सौरभ भैया।
0: हाँ रामजीत भैया।
1: यह समय देखो मौसम कौन मेर करवट ले रहा है और आज तो मौसम तनु बढ़िया लाग और ठंड रहे बढ़िया तना कोनो मेर का दिक्कत ना रहे। आज हमें कोनो दिक्कत ना है संजा का आवे में।
0: बिल्कुल सवेरे ठंडा भा फिर एकदम से दोपहर में धूप हुई गए।
1: हाँ,
0: है ना। तो लेकिन हम भैया गमछा उमछा लेके चले रहे कि हमका पता रहा है।
1: हाँ,
0: कि दोपहर में हो सकत मौसम बिगड़ जाएगा है कि दो तीन दिन से ऐसे हो रहा है।
1: बिल्कुल भैया ठीक
0: अपन प्रोग्रामो सुनी थे तो वो चेतावनी दिन करते हैं बीच बीच में तो का समझ के हम जो है गमछा उमछा लेके चले रहे।
1: बिल्कुल। और यही में एक चीज हम और बताइए भैया कि यह उस समय है जब मौसम जो है एकदम बदल जाता है तो वही समय हम पंच बीमारो हो जाते हैं। तो हम पंच यह समय बीमार ना हुई आपन ख्याल राखी। और सबसे बढ़िया चीज ई है यह समय कि ई नहीं है कि हर काम की तरह हमें बहरन जाए है कि कौनो चीज का हमें आवेदन कर रख है या कौनो खाता खुलावक है या ऑनलाइन कऊ तरह के काम होता है अपने खेते खतौनी हो गया खेते ऑनलाइन कराव हो गया कौनो मेर के काम
0: कहा का मतलब यू है कि अब चल रहा है डिजिटल इंडिया का।
1: हाँ,
0: युग तो जो भी चीजें हैं वो सारी डिजिटल तरीके से हो जा रही हैं। जैसा कि आप बताओ कि खसरा हो खतौनी हो बैंक के पासबुक हो आजकल तो रुपये हो भैया अगर पैसा भेजक हो तो खट सीएस बटन दबाओ खट जहाँ भेजो वहाँ पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया यही माँ सावधानी जरूरी है।
0: सावधानी तो बहुत जरूरी है। देखो माँ बात क्या है कि उमा जौने लिंक पर भेज रहे हो पैसा उनका कायदे देखक जो है वो ऐसा सुना है उनका आजकल तो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं फिशिंग जैसे गाँव पहले नहीं हुआ मछली पकड़ी जाता रहा है दाना लगा के यहाँ वैसे जो जिनका हैकर वैकर बोलते हैं अंग्रेजी में ये सब ऐसे जो है बनावत है और उमा जो है मछली के इतना जो है हमका सब
1: कांटा लगा के बैठा।
0: हाँ कांटा लगा के बैठा थे और हमका पंचन का फसावत है।
1: अच्छा।
0: तो उसे फंसे से बचे के लिए जरूरी है कि अगर कुछ दिक्कत आ रही कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो अपन युवा भैया बहनी है उनका एक बार दिखा लियो उनसे पूछ लियो कि भैया तुम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो ज्यादा जानकार हो तो कुछ जानकारी दे दो।
1: बिल्कुल भैया। और यही माँ हम तो पंच यह कहे कि देखो अब तो

0: जो उन वो बड़कवा फोन नहीं आवत है
1: स्मार्टफोन,
0: हाँ वो बड़कवा फोन अगर है तो बहुत समस्या तो वही से हल हो जात है। वही माँ बोल के पूछ ले जौन चीज के जानकारी तुहे चाहिए कुल मिल जाए। और जैसे अगर क्यों पढ़े लिखे चाहत है, अब हमारे दादा हम देखन है वह कहीं कि कैसे लिखा जाए ए बी सी डी लिखे बता दीस।
1: अरे वो ए बी सी डी तो बता दीस, लेकिन उतने कोई ढंग की जानकारी पूछो तो कबो कबो गलत बता देते है।
0: वो कैसे भैया,
1: इसलिए जरूरी है कि जो उतने पूछो तो साथ में जाओ पूछो जानकारी दे कहाँ तो रहे हो वो लिंक दो तुम तो जाकर खोल लो तो अपनी आंखें से पढ़ोगी हाँ यू ठीक है।
0: ये बात तो भैया ठीक कहो हाँ। और तुम तो भैया जान जाई हो हाँ। पढ़े लिखे हो
1: हाँ।
0: मूल हम पंच इतना देखो पढ़ा लिखा तो नहीं ना
1: हाँ।
0: हम पंच वही का उतना समझ ना पाई
1: तो हम पंच हन हम तो सबसे पूछो
0: हाँ
1: है?
0: और इके ताए एक चीज और है
1: हाँ।
0: कि जौन चीज ना समझ में आवे अपने गांव घर में अपने लड़का बच्चा से जे वही का जानत हुए वो करे लगे जाए के वही का समझ के तब बात कही हो तो कौनो मेर के दिक्कत न हुई।
1: अच्छा इसे एक बात और याद आई, कल इसे शाम का अचानक से मौसम खराब था तो डिजिटल इंडिया में एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि सरकार की तरफ से तुरंत भन्न से मोबाइल में मैसेज आवा है कि अतनी अतनी गति से हवाएं चले वाली है आंधी तूफान आवे है सबको समझ जाओ
0: हाँ हम पंचन सब एक जन एक साथ हुए सचेत हो गए
1: हाँ एक साथ हुए सबके फोन पर चला
0: हाँ।
1: है तो जो मान लो कोई आपदा आवे ली है तो वही को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है प्रबंधन हो जा रहा है
0: बिल्कुल। अब आपदा बात कहो
1: हाँ।
0: अब हमारे घर इतने रहे वो खटाई वटाई कुल छत पर फैलाई के
1: हाँ।
0: रखे रहे और जब संध्या बेरिया काउकिन वही का लपेट के झाँक तो वही धाय दिन और जब ई मैसेज आवा की तेज हवा चली और बरखा बुनी हुई तब हम उनसे तुरंत जुड़ते जाओ वही का नीचे लेके कुल फुलाई जाए
1: हाँ।
0: तो फिर वह लेके आए वही को थोड़ी देर बाद भैया हाँ। बुनियाद लाग
1: तो कहा क्या मतलब तो यू है कि अगर कोई आपदा वाला तो इतने सावधानी है लेकिन उनके पहले अगर कुछ कहूँ धरे हो बाहर वो कुछ दिक्कत है तो का उठा के अंदर धर लो सारी सावधानी पहले बरत लो
0: बिल्कुल भैया। और यही का देखो कहा थी प्रबंधन प्रबंधन अगर हम पंच कई ली थे चाहे अपने सामान के होए चाहे अपने काम काज के होए चाहे अपन समाज संबंधन के होए और चाहे अपन समय के होए
1: बिल्कुल
0: प्रबंधन अगर हम पंचन के बढ़िया है तो फिर हम पंच जौन नुकसान हो सकत है
1: उसे बच सकित हाँ। और बहुत कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं
0: बिल्कुल भैया। और कऊ दांत तो ऐसा हो जाता है कि जौन कहो ना बच सकती है तो हम पंच पहलवे तैयारी कर ली थे तो वो नुकसान ना हो पावत जो नुकसान हो सकते
1: सावधानी रहते हैं
0: हाँ
1: है?
0: और यकरी ता एक चीज ये जरूरी है भैया हाँ। कि हम पंचन का वह प्रबंधन के बारे में जानकारी हो जैसे कौदा गांव घर में आग लग जाता है या जब नदी वदी बाढ़ा था ना तो पानी घर में घुस जाता है या कबो कबो जैसे बहुत तेज अभी परसों एक बात है कि खूब तेज बरखा बूनी भय तो बिजली कड़कड़ाए लागत है तो ये सब स्थिति अगर हो तो जो एक कहा थी आपदा अगर यही से हम पंचन का प्रबंधन की जानकारी है तो हमार गांव घर जौन है आगे तना बढ़ी और कौनो मेर के केहू का दिक्कत न हुई। और यही बदे देखो आज के बैठकी में विषय लायन है ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जय शंकर राय भैया तो आओ यह जानकारी का सुना जाए और कैसन कौन आपदा प्रबंधन करे है वही का समझा जाए
1: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: आपदा अचानक आने वाली वह घटना होती है जिसके अचानक आगमन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है एकाएक लोगों का जानमाल का इतना भारी भरकम नुकसान हो जाता है कि जीवन को सामान्य बनाने और पटरी पर लाने के लिए विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग अनिवार्य हो जाता है। बिना सामाजिक प्रशासनिक एवं स्थानीय सघन प्रयास के जीवन का पुनर्स्थापन संभव नहीं हो पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली आपदाएं दो प्रकार की होती हैं प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ भूकंप सूखा आंधी तूफान चक्रवात सुनामी महामारी आदि शामिल हैं और मानव जनित आपदाओं में आगजनी यातायात संबंधी बड़ी दुर्घटना आतंकी हमला बम विस्फोट असामाजिक तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया नरसंहार या अत्याचार आदि घटनाएं इसमें आती हैं। भारत एक विशाल देश है यहाँ की 60-70% आबादी इतना तीव्र गति से शहरीकरण होने के बावजूद आज भी गांवों में बसती है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र का भौगोलिक रंग ढंग अलग अलग है। यहाँ सुगम दुर्गम दोनों तरह के क्षेत्र हैं कुछ इलाके समुद्र के किनारे हैं तो कुछ दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं जहाँ पर आवागमन करना बहुत कठिन होता है। कहीं विस्तार में फैला हुआ रेत

रहे थे, जैसे कच्छ का रण, थार का रेगिस्तान। राजस्थान के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां गर्मियों में भयंकर लू चलती है, और उन इलाकों में गर्मियों के दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत मुश्किल रहता है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूकंप, बरसात के मौसम में भयंकर भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियरों के टूटने के कारण जानमाल की भयंकर क्षति होती है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं असंभव सा होता है, तथा इन इलाकों में जनजीवन को पटरी पर लाने में जहां दीर्घ काल लगता है, वहीं पर सामान्य स्थिति बहाल करने में अधिकतम अर्थ और संसाधनों की सख्त आवश्यकता पड़ती है। समुद्र तटीय इलाकों की बसावट, जहां समुद्र में समय समय पर आने वाली विभिन्न तरह की तीव्र हवाओं, उठने वाली लहरों, ज्वारभाटा, चक्रवाती, आंधी तूफान, अतिवृष्टि, सुनामी के कारण समय समय पर जानमाल की बेहद क्षति होती है और सब कुछ उलट पलट अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसको सुव्यवस्थित करने में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर आने वाली विभिन्न आपदाओं को देखते हुए ही उनके उचित प्रबंधन और जानमाल की क्षति को कम करने और त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ही हल ढूंढने के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने हेतु ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की सोच है कि शासन प्रशासन के तंत्र को तो आपदा प्रभावित स्थलों पर सहायता पहुंचाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ग्राम पंचायतें तो वहीं मौजूद होती हैं, अतः उपलब्धता तथा पहुंच की दृष्टि से आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें कहा गया है कि पंचायती स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु तत्काल राहत पहुंचाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रक्षा दल का गठन आवश्यक है, और इस समूह को विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे आंधी तूफान, बाढ़, महामारी, भूकंप, आगजनी, लू अर्थात तीव्र गर्म चलने वाली हवाओं से निपटने हेतु और ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए ग्राम रक्षा दल के प्रत्येक सदस्य को जिला प्रशासन की मदद से प्रशिक्षित कराना आवश्यक हो जाता है। समय समय पर इनमें जागरूकता लाने हेतु बचाव के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना भी चाहिए। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय परियोजना समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्थापित संस्थागत आधार पर आधारित है। 17 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना DMP MOPR जारी की गई है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप ग्रामीण आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करते हुए जनभागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर पर आपदा सहनशीलता को मजबूत करना है। इस योजना में पंचायती और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा उन्हें स्थानीय विकास प्रक्रियाओं, विशेषकर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं GPDP के साथ एकीकृत करने की मांग की गई है। यह पहल पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय योजना प्रक्रिया में जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के चल रहे प्रयासों को सुदृढ़ करेगी। यह कार्य योजना पंचायती राज मंत्रालय MOPR और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 507.37 करोड़ के परिव्रय के साथ मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राज्य के आकार और तीव्रता के आधार पर यह योजना 20 राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। इन राज्यों के कुल 81 आपदा प्रवण जिले शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 20 ग्राम पंचायतें होंगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख आपदा विशिष्ट जोखिमों पर केंद्रित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारी, शमन और लचीलेपन की रीढ़ के रूप में विकसित करना है। मॉडल ग्राम पंचायतों को एक एक क्लस्टर के रूप में, जिनमें कम से कम 8 ग्राम पंचायतें जुड़ी होंगी, विकसित किया जाएगा, ताकि समान उपायों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो।

0: इस योजना में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति, विलेज डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी, आपदा मित्र तैयार करेगी जो स्थानीय स्तर पर पहली प्रतिक्रिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करेंगी। ये मॉडल ग्राम पंचायतें आपदा लचीलेपन की योजना, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक तैयारी में एकीकृत करने के लिए प्रदर्शनकारी टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगी। इस परियोजना में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना में DRR का संस्थागत सुदृढ़ीकरण और नीतिगत एकीकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों SDMA, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों DDMA और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण तथा जागरूकता सृजन शामिल है, जो लक्षित सूचना शिक्षा और संचार IEC पहल द्वारा समर्थित है। यह प्रभावी और निरंतर आपदा शमन को सक्षम करने के लिए स्थानीय, जिला तथा राज्य स्तरीय हितधारकों के बीच अंतर संस्थागत समन्वय को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पंचायती राज मंत्रालय आपदा प्रबंधन योजना को एकीकृत करने, व्यय पर नज़र रखने और पंचायतों की वास्तविक समय की जानकारी प्रसारित करने के लिए ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र आदि सहित अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा। जमीनी स्तर पर निरंतर संस्थागत क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, मास्टर प्रशिक्षकों और सामुदायिक सेवकों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय की भागीदारी से आपदा जोखिम को कम करना, तैयारी करना और तत्काल राहत प्रदान करना है। इसके तहत ग्राम पंचायतें ग्राम आपदा प्रबंधन योजना बनाती हैं। स्वयंसेवकों, जिनको हम आपदा मित्र भी कहते हैं, इनको प्रशिक्षित करती है और पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से जान माल के नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास करती हैं। पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन के निम्न प्रमुख घटक हैं: योजना और तैयारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सूचना संकलन रिपोर्टिंग, आपदा के दौरान त्वरित कार्यवाही, आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण। इसमें ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, जिसमें खतरे का मानचित्रण और संवेदनशील परिवारों की पहचान करना शामिल है। पंचायत सदस्यों, महिला आपदा सखी और युवा आपदा मित्रों को बचाव कार्यों, प्राथमिक चिकित्सा तथा राहत शिविर प्रबंधन का प्रशिक्षण देना भी है। आपदा की पूर्व सूचना को गांव के अंतिम छोर तक लाउडस्पीकर, सायरन या घंटी के माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है। आपदा की स्थिति की जानकारी एकत्र कर उच्च अधिकारियों जैसे तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन को भी समय पर देना चाहिए और आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, उनको भोजन और चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और इसके लिए क्षतिग्रस्त घरों, सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत पर करना चाहिए ताकि भविष्य में नुकसान कम हो। आपदा के कारण हुए नुकसान को निष्प्रभावी बनाने हेतु सहयोग एवं समन्वय की अति आवश्यकता होती है। इसमें जिला प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सहयोग बनाते हुए आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर आने वाली आपदाओं के जोखिम को मिनिमाइज करते हुए बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।
1: बिल्कुल भैया। सौरभ भैया, एक बात हम और कहा चाहिए।
2: हाँ, पहले तो हम यू कहा चाहिए कि जो जानकारी इतने वृहद तरीके से दिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विषय पर डॉक्टर जयशंकर राय भैया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक बात हम जोड़े चाहिए।
2: हाँ।
1: कि आपदा प्रबंधन का जौन बात कहें, ये बात हम पंचन का समझे चाहिए और अपने रोजमर्रा के जिंदगी में अगर कौन ऐसी स्थिति कबो आवत है तो यही की तय सचेत रह चाहिए।
2: बिल्कुल, यही के लिए तो इतनी लंबी चौड़ी जानकारी अपने पंचन का सुनाई।
1: बिल्कुल। और ये सचेत हम पंचन का ऐसा न रह चाहिए जैसे अपने अपने घर के मेहररुए होती है। कौनो विपत्ति हो, कौनो स्थिति हो, कबो तुहरे लगे पैसा न हो और कहो उनसे पैसा है तुहरे लगे तो कहीं नहीं है, लेकिन कौनो हैवी दैवी जब पर जात है तो उनके

0: लगे न जाने कहाँ से पैसा आई जात है और वह विपत्ति माँ हम पंचन का वह खुद ही निकाल लेती हैं। और ऐसे चाहे जितना कहें कि हमरे लगे एकदम पैसा ना है, तू छान ले कह लो वो कह लो, पैसा ना निकली, लेकिन वह स्थिति में एक जो बड़ा आदमी के नाय होता वही मेरे के हाथ लगावा थी। तो
1: आपदा प्रबंधन में यहाँ कहा गया मतलब यू है कि घर के जो महिलाएं हैं वो आगे हैं।
0: बिल्कुल भैया आगे हैं और आगे रह उनका चाहिए।
1: कहता
0: है प्रबंधन अगर कौन चीज का बहुत बढ़िया है तो निश्चित वही के लाभ जौन है वो सबका मिलत है। मूल जौन घर गृहस्थी के प्रबंधन है वो जिम्मेदारी वही के ऊपर है।
1: नहीं, लेकिन यह जिम्मेदारी बराबर सबकी बनते है, इसलिए यू महत्वपूर्ण है अपन जो पंच भाई है वो जिम्मेदारी के बराबर से निर्वहन करें।
0: बिल्कुल भैया, और ये बात हम यही मारे कहे चाहते है कि जैसे कोनो खाप बनाएन कुछ बनाएन और भोजन पर बैठन और वही समय अगर कह दो कि यह समय तनी आम वाम है तनी चटनी उटनी बनाए लो तो कहीं कि हम आज ना बनाए पाए, हमार कलाई दुखात है या हमसे
1: अरे तो खुद बना लो ना,
0: लोहार नहीं चलत है। अरे भैया बतिया तो ठीक है, लेकिन कबो कदार यह मन होता कि घर इतने बनाए दें तो वही के जीवन का और खाब का आनंद जो है वो बढ़ ही जाए।
1: हाँ हाँ, लेकिन कबो कबो जो यहाँ जरूरी है कि उनको आनंद आवक चाहिए कि आप बना के दे।
0: हाँ हाँ, तो फिर सरिता मिश्रा बहनी ऐसा बात कह रही है तो आओ गीत गौने के माध्यम से
1: अच्छा
0: यही का आनंद लीन जाए।
1: आप समझ रहे हैं हमसे ना चटनी पिसाई।
0: हाँ भैया
1: सुना जाए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सौरभ भैया।
2: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो अपने खेती पाती में काम तो जौन है वो लागे रहा था और यह समय कामों खर खूब अपने खेती पाती में हाइये है और सब्जी वब्जी इस समय निकल रही है। बाजार बाजार भाव देखो बढ़िया तना हम पंचन केयर मिल रहा है।
2: बिल्कुल भैया।
1: और बहुत जने अपन अपन नर्सरियों केयर जो व्यवस्था है वो करे लाग है। बहुत जने मिट्टी विट्टी अपन यार वार जौन है जो
2: करे लाग है। बिल्कुल हम हूँ अपन पंच कर रहे हैं लेकिन तनिक ध्यान मौसमों के रखे हैं।
1: हाँ।
2: है कि अचानक से मौसम बिगड़त है तो उसकी का तैयारी के रखे थे। यो अपन चार पांच लोग हम लोग बैठ गए अपन आपस में समझित है एक दूसरे से चर्चा करी थे वही के बाद कोनो निर्णय ले थे तब काम की तरफ देखो भागी थे और ध्यान थे यहाँ के जो मौसम हाल रोज हम जरूर सुनी।
1: बिल्कुल भैया। और मौसम के साथ ही साथ ये जब अपने खेती पाती में कोनो चीज हम पंचन का फसल लेख होत है तो वही समय अपने माटी के अवस्था और व्यवस्था हम पंचन का जरूर समझे चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: माटी अगर गड़बड़ है माटी अगर बीमार है माटी में अगर पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में नहीं है तो निश्चित तौर पर जौन अपन उत्पाद हुई जौन फसल तैयार हुई वो उतनी बढ़िया तना न तैयार हुई।
2: बिल्कुल मोटे तौर पर आप बात कर रहे हो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के।
1: बिल्कुल भैया।
2: कहे कि हाँ
1: बताए दो अपने पंचन का।
2: कहे कि अगर मिट्टी के स्वास्थ्य सही रही तो जो भी अपनी फसलें लगाई गई हैं वो जो है उनमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वही कायदे से नहीं हुई हैं जो अपने स्वास्थ्य के भी लिए भी लाभदायक हुई हैं उनके साथ में बाजार में उनका दामों अच्छा मिली।
1: बिल्कुल भैया। और मिट्टी स्वास्थ्य का बढ़िया करेक्ता है हम पंच तमाम तरह के खाद के इस्तेमाल करी थे जैमे वर्मी कंपोस्ट खाद आवत जिका केचुआ खाद बोला जाता है और गोबर के खाद आवत है हरी जौन खाद है सनई ढैचा का वही के इस्तेमाल करी थे।
2: बिल्कुल।
1: इन सबसे आपन खेत का माटी जौन है वो तो मजबूत होता है और साथ ही साथ खेतों बढ़िया रहता है।
2: बिल्कुल।
1: मूल कऊ दाय का होता है कि ज्यादा फसल के इच्छा हर पंच का होता है और वह इच्छा में कऊ दाय ऐसा होता है कि हम रासायनिक खादों के इस्तेमाल करी थे जब वो खाद के उतनी आवश्यकता खेते में पूर्ण नहीं हो पावत।
2: बिल्कुल। लेकिन जोन है
1: महिमा का है कि हम पंच अपने माटी के जांच जौन है वही का जरूर कराए ली कहे ताई रसायन के जौन हम इस्तेमाल करी था अगर वही के कौनो रसायन के अधिकता हो जाए तो माटी अपने आप धीरे धीरे खराब हो जाए।
2: पहली बात तो यह है कि मिट्टी के जांच जरूर कराओ मिट्टी के जांच कराओ के लिए खेत में यहाँ कईयों जगह से माटी ले लें उसका आपस में मिक्स कर लें मिला लें अच्छे से उसके बाद जो है जांच के लिए ले जाऊं है ना। तो जो ना आप बात बता रहे हो रासायनिक खादन के इस्तेमाल तो पहली बात तो इनके खाद के इस्तेमाल से बचक चाहिए और फिर जब हुआ से पता लाग जी कि कितनी कम आवश्यकता में अपन काम चल सकत है तो वह हिसाब से उसका उपयोग करें। दूसरी बात जिसे हो रही है कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तो इनके बहुत सारे फायदे हैं है ना। जैसे एक फायदा यह है कि लागत में यहाँ भारी कमी आ जाती है जैसे मिट्टी के जांच के आधार पर जैसे कौन यूरिया है डीएपी है ये पर कितनी डायरेक्ट है ये अगर पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा डायरेक्ट बची और का पैसा बची।
1: बिल्कुल भैया। और यही में एक चीज और है कि जब हम ज्यादा खाद डाल दी थे तो

0: कऊ दा जौन हमार फसल है वही का नाय ले बोते हैं और फसल पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है और फसल हम पंचन के खराब हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर जितनी आवश्यकता है हम उतना खाद लेवे तो हमार फसल जौन है वो बढ़िया रही,
1: बढ़िया रही है, उमा भरपूर पोषक तत्व हुई है।
0: बिल्कुल। और जब जांच हम कराए ली थे तो वही में हमें जानकारी यह हो जाता है कि हमारे माटी में जौन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वन के कितनी अधिकता है कितनी कमी है। और जब हम वह हिसाब से अपन खेत तैयार करी था फसल की तरह तो निश्चित तौर पर जो अपन फसल है वो बढ़िया तना आगे बढ़त है।
1: बिल्कुल भैया। और साथ में यह है कि जोन है आज है शुक्रवार
0: और शुक्रवार के दिन हम पंच लाए थे किसान डायरी,
1: तो अपने किसान पंच जो भाई हैं उनके लिए हम लोग किसान डायरी लाए हैं जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित है। तो अपने पंच भाई की किसान डायरी सुनवाई जाए जिसका आलेख एवं वाचन किन है राजवीर रतन भैया और जिसका संपादन किन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो आओ सुनी जाए किसान डायरी।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। पहले सुनिए सप्ताह की सुर्खियां।

0: पोषक तत्व होते हैं वन के कितनी अधिकता है कितनी कमी है, और जब हम वह हिसाब से अपन खेत तैयार करी थे फसल की तरह तो निश्चित तौर पर जो अपन फसल है वो बढ़िया तरह आगे बढ़त है।
1: बिल्कुल भैया, और साथ में यह है कि जो है आज है शुक्रवार
0: और शुक्रवार के दिन हम पंच लाए थे किसान डायरी,
1: तो अपने किसान पंच जो भाई हैं उनके लिए हम लोग किसान डायरी लाए हैं जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित है। तो अपने पंच भाई की किसान डायरी सुनवाई जाए, जिसका आलेख एवं वाचन किन है राजवीर रतन भैया और जिसका संपादन किन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो आओ सुनी जाए किसान डायरी।
1: बिल्कुल,
2: नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। पहले सुनिए सप्ताह की सुर्खियां। प्रदेश में है उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना तैयार, पौधशालाओं में 52 करोड़ से अधिक पौधे तैयार, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं 15 जून तक होंगी पूरी, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 5 कंपनियां लगाएंगी उद्योग, प्रदेश के 16 जिलों में लगेंगे आलू आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण की 19 नई इकाइयों को भी मंजूरी, जलदूत ऐप से होगा भूजल स्तर का आकलन, गौ संरक्षण केंद्रों के लिए 13 करोड़ मंजूर, और जैव विविधता दिवस पर हुए विभिन्न आयोजन। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 23 मई को विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता और समय पर उचित मात्रा में उर्वरक और बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने बताया कि पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र से समन्वय बनाए हुए है। वर्तमान में पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में 3.5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उर्वरक उपलब्ध हैं। इसी 22 मई तक प्रदेश में यूरिया की कुल उपलब्धता लगभग 13.5 लाख मीट्रिक टन रही, जो किसानों की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। DAP की उपलब्धता भी बढ़कर 5.25 लाख मीट्रिक टन हो गई है। प्रदेश में यूरिया, DAP, NPK, SSP और MOP को मिलाकर कुल 28 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक स्टॉक उपलब्ध है। वितरण व्यवस्था में लगे सहकारिता विभाग के पास वर्तमान में 5.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 3 लाख मीट्रिक टन DAP का स्टॉक सुरक्षित है। खरीफ फसल के लिए धान, उड़द, मूंग, अरहर और तिल सहित विभिन्न फसलों के लिए कुल 1,99,910 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 80,511 क्विंटल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर रही है। बुधवार को इसके लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में विधान भवन में समिति कक्ष में एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में गोबर खाद के प्रयोग और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों के संचालन की रणनीति पर विचार किया गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग ने राज्य की 1901 पौधशालाओं में 52 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये पौधे रोपे जाएंगे। इनमें सागौन और शीशम जैसी इमारती लकड़ी, आम, अमरूद आदि फलदार पौधे, नीम, सहजन जैसे औषधीय पौधे और पीपल, बरगद जैसे पर्यावरणीय महत्व के पेड़ शामिल हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गत सोमवार सिंचाई विभाग मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी सभी परियोजनाएं हर हाल में 15 जून तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इनमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 5 कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों, उद्यमियों और युवाओं के लिए काफी संभावनाओं वाला है। इस सेक्टर में आय बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर भी बहुत से हैं। कानपुर देहात में कार्बोनेट वाइन

निर्माण मुजफ्फरनगर में ऑर्गेनिक जैगरी क्यूब्स, ब्राउन और सफ़ेद चीनी, एटा में चिकोरी प्रसंस्करण, बाराबंकी में फ्रोजन फूड्स और सब्जी प्रसंस्करण और हाथरस में सौंफ प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, अनुदानों और प्रोत्साहनों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाएं ताकि उद्यमी निवेश के लिए आगे आएं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। आलू किसानों के लिए अच्छी खबर है कि प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण के नए उद्योग लगेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति ने इनके प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत युवा उद्यमियों की इन औद्योगिक इकाइयों में आलू पाउडर, वोदका, स्टार्च, चिप्स और भुजिया आदि का उत्पादन होगा। ये इकाइयां कन्नौज, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गाजियाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या और बरेली में स्थापित होंगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए दूसरे प्रदेशों के भी 2 दर्जन से ज़्यादा निवेशक इंतजार में हैं। सरकार इन निवेशकों के प्रस्तावों पर भी गौर कर रही है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की 19 और नई इकाइयां भी लगेंगी। राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की 19वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश में 19 प्रस्तावों को बैठक में हरी झंडी दी गई। खाद्य और प्रसंस्करण नीति आने के बाद से अब तक 521 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता, जल स्तर में गिरावट और संभावित जल संकट की पहचान के लिए जलदूत ऐप से सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। 25 मई से शुरू हुआ ये सर्वेक्षण 15 जून तक चलेगा। सर्वेक्षण के आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण की योजना बनाने, वर्षा जल संचयन की प्राथमिकता तय करने और संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ वंश के संरक्षण के लिए 6 जिलों में 8 नए गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए 12,80,96,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे गोंडा के करनैलगंज, फिरोजाबाद के मदनपुर, एटा, संभल के चंदौसी, आजमगढ़ के मुस्तफाबाद और अलीगढ़ की खैर तहसील में 2 गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए आलू के बीज की अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। आलू बीज में धांधली रोकने के लिए वितरण प्रक्रिया में ये बदलाव किया गया है। अब तक किसानों से अनुदान को कम करके बीज की कीमत ली जाती थी। अब बीज की पूरी कीमत किसानों से ली जाएगी और अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों और पशुपालकों के लिए सुझाव दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों प्रदेश के विभिन्न अंचलों में तापमान सामान्य से 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहने और लू चलने की प्रबल संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिकों ने फसलों में उचित नमी बनाए रखने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही पशु चिकित्सकों का कहना है कि गर्भवती गाय और भैंस को लू में बिल्कुल ना ले जाएं। भूसे में ज़्यादा पानी मिलाकर पशुओं को खाने के लिए दें। पशुओं को या बच्चों को कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर नहलाएं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों और संस्थान निदेशक डॉक्टर काजल चक्रवर्ती ने जैव विविधता के मायने बताते हुए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हर जीव का अपना अलग महत्व है। जैव विविधता मानव जाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान विभाग के सहयोग से स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने स्टॉल लगाकर सब्जियों के बीज बांटे। लखनऊ प्राणी उद्यान में आयोजित समारोह में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जैव

0: विविधता प्रतीक पोस्टर का अनावरण करते हुए विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। निगोहा लखनऊ के मस्तीपुर गांव में शुक्रवार को मेरा गांव मेरा गौरव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की ओर से किया गया। यहां किसानों और ग्रामीणों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित खादों के उपयोग, मत्स्य पालन और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक और नीम कोटेड यूरिया के उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन, मछली पालन तकनीकों की जानकारी दी। कुछ साल पहले तक भारत में कमलम नाम से जाना गया ड्रैगन फ्रूट आयातित फल माना जाता था, पर आज ये फल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्षेत्रफल पहले से लगभग 3 गुना हो गया है और उत्पादन 21,220 मीट्रिक टन से बढ़कर 53,720 मीट्रिक टन हो गया है। ये फसल बहुत तेज गर्मी और 40 से 45 डिग्री तक के तापमान को अच्छी तरह सहन कर सकती है। ड्रैगन फ्रूट को कम पानी की ज़रूरत होती है और यह लंबे सूखे मौसम में भी अच्छी पैदावार देता है। एक बार पौधा लगाने के बाद ये 20 से 25 वर्षों तक फल दे सकता है। ड्रैगन फ्रूट की लोकप्रियता इसके औषधीय गुणों की वजह से भी बढ़ी है। एंटीऑक्सीडेंट फाइबर और विटामिन से भरपूर होने के कारण इसे एक सुपर फूड माना जाता है। डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं संपन्न होता है।
1: सौरभ भैया।
2: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो, किसान डायरी कृषि समाचार पर आधारित रहा है। आलेख एवं वाचन रहे राजवीर रतन भैया केर और संपादन रहे डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया केर।
2: तो ये दोनों लोन क्या बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करी थे अपन पंच भाई जो है ध्यान से समाचार सुनी हुई है और जो उनके उपयोग क्या हुई है वो
1: जानकारी
2: उपयोग, हाँ वो जानकारी क्या उपयोग करी है।
1: बिल्कुल भैया, और जानकारी के साथ साथ कुछ गीत गौने हो जाते हैं तो और बढ़िया हो जाता है। वो चाहे फिर बाजार हाट के हो चाहे अपने घर गवाए हो तो कुछ गीत गौने सुनवाए दो भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, गीत गौना बहुत जरूरी है मनोरंजन के लिए। तो चलो सुना जाए किरण गौतम बहिनी की आवाज में नकटा।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल सौरभ भैया, बाजार चले जइबे और जौन जौन बताइन है वही का लेहे होबे, लायक दे देबे, नहीं तो फिर भैया घरे
1: फिर जाएगा ना सुने परी।
0: हाँ, अरे वो सुने परी और फिर खाना दाना जौन है वही में दिक्कत हो जाए। तो अब बाजार के सबसे पहले बाजार के बात किन गए है, तो बाजार भाव जौन है वही का मंडी के बता दीजिए, चार मंडी के बाजार भाव।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जौन है लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या।
1: तो अपने पंच भाई के चार मंडी के हम बाजार भाव बता दे रहे हैं, जो कि थोक के हिसाब से है, प्रति क्विंटल के हिसाब से। गेहूं दड़ा लखनऊ में है 2590 रुपया, कानपुर में है 2585 रुपया, गोंडा में है 2530 रुपया और अयोध्या में है 2585 रुपया। छोटा चना लखनऊ में है 6650 रुपया, कानपुर में है 6460 रुपया, गोंडा में है 6650 रुपया और अयोध्या में है 6400 रुपया। और अरहर के दाल की अगर बात की जाए तो लखनऊ में है 10950 रुपया, कानपुर में है 9300 रुपया, गोंडा में है 10800 रुपया और अयोध्या में है 10900 रुपया। अगर मटर सफ़ेद की बात की जाए तो लखनऊ में है 4430 रुपया, कानपुर में है 4520 रुपया, गोंडा में है 4230 रुपया और अयोध्या में है 4250 रुपया प्रति क्विंटल। अगर आलू सफ़ेद की बात की जाए तो लखनऊ में है 720 रुपया, कानपुर में है 660 रुपया, गोंडा में 870 रुपया और अयोध्या में है 700 रुपया। अगर प्याज लाल की बात की जाए तो लखनऊ में है 1330 रुपया यानी कि 1330 रुपया, कानपुर में है 1260 रुपया, गोंडा में है 1200 रुपया और अयोध्या में है 1200 रुपया। अगर बैंगन की बात की जाए तो लखनऊ में है 1850 रुपया, कानपुर में है 1750 रुपया, गोंडा में है 2200 रुपया और अयोध्या में है 2600 रुपया। अगर पका टमाटर की बात करें तो लखनऊ में है 1530 रुपया, कानपुर में है 1300 रुपया, गोंडा में है 1200 रुपया और अयोध्या में है 1463 रुपया। और आखिरी में है गुड़पारी के बात अगर करें तो लखनऊ में है 4660 रुपया और कानपुर में है 4240 रुपया। तो यूँ रहा है चार मंडी का थोक बाजार भाव, लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या, जो कि प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा है।
0: बिल्कुल भैया। और अब कल के कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो लोकायतन में रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बदलता गांव, जिनके वार्ताकार हुई अजीत प्रताप सिंह भैया, और खेती किसानी में रही गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन, वार्ताकार हुई हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह भैया, इनसे बतकही की इन्हें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और अब अपने बैठक में पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद, हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
4: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने है। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
3: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
4: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने

0: ने कहा था विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: विदेश के किसानों के मसीहा थे।

0: राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
1: विदेश के किसानों के मसीहा थे
0: के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशेष शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण

0: किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31 और इसी के साथ प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम।
3: अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द इंग्लिश प्रोग्राम। आई एम योर होस्ट शीबा राकेश। इन टुडेज एडिशन ऑफ द इंग्लिश प्रोग्राम लिसनर्स, आई विल ट्राई एंड अनफोल्ड द नॉट वेरी वेल नोन एंड येट द वेरी फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग एंड द इंटेंसिटी पर्सोनिफाइड सागा ऑफ द इंडियन मिस्टिक सेंट अक्का महादेवी।

0: विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर

एनजीपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और क्यूआर कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:45 और इसी के साथ आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं शफाकत अमानत अली की आवाज़ में माई नेम इस खान इस फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: माई नेम इज़ खान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी शफाकत अमानत अली की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा, अभी रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आक्रोश फिल्म का गीत, जिसे गाया है जावेद अली ने। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के और धुन प्रीतम की।

आक्रोश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जावेद अली की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। ये गीत गाया है श्रेया घोषाल और तोची रैना ने। समीर के बोल हैं और संगीत सचिन जिगर का। फिल्म का नाम शोर इन द सिटी।

0: श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज़ों में आप सुन रहे थे शोर इन द सिटी। इस फिल्म का गीत और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8 और इसी के साथ प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज है 29 मई। सुशील कुमार चड्ढा, जी हाँ, यही मूल नाम है सुप्रसिद्ध हास्य कवि हुल्लड़ मुरादाबादी का। आज आपकी जन्म जयंती है। 29 मई 1942 को गुजरांवाला में आपका जन्म हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में बस गए और बाद में मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपने शेष वर्ष बिताए। आपातकाल के बाद 1978 में रिलीज हुई आईएस जौहर द्वारा निर्देशित हिंदी व्यंग फिल्म नसबंदी के लिए भी आपने गीत लिखे। उन्होंने बंधन बाहू का, जो 1988 में रिलीज हुई, और संतोष 1989 में, इन फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में अभिनय भी किया। आपने हिज मास्टर्स वॉइस और टी सीरीज द्वारा निर्मित कई रिकॉर्ड बनाए हैं और वो विभिन्न कवि सम्मेलनों के लिए हांगकांग, बैंकॉक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मैनचेस्टर और अमेरिका भी जा चुके हैं। आपकी जो रचनाएं हैं उनमें इतनी ऊंची मत छोड़ो, क्या करेगी चांदनी, ये अंदर की बात है, त्रिवेणी, तथाकथित भगवान के नाम, मैं भी सोचूं तू भी सोच, दमदार और दमदार दोहे, जिगर से बीड़ी जला ले, हुल्लड़ की श्रेष्ठ हास्य व्यंग रचनाएं, अच्छा है पर कभी कभी, ये तमाम रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। आज के संक में अपने आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से हिंदी जगत के इस महान हास्य कवि को शत शत नमन। आइए श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं एक हास्य काव्य पाठ जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री प्रवीण कुमार शुक्ला।
2: देखिए, आज परिवार में क्या चाहे पद बदने में कितना भी वो हो जाए, लेकिन घर का माहौल जो है, मतलब उसके बिना आदमी नहीं रह सकता है। देखिए, शांति आदमी ढूंढ रहा है। मैं घर से निकला गर्मी से बेहाल हो गया, मैं घर से निकला गर्मी से बेहाल हो गया, पेड़ के नीचे लेट गया मुझे शांति मिली, पेड़ के नीचे लेट गया मुझे शांति मिली, मैं शांति के साथ घूमा, रेस्टोरेंट में एंटर हुआ, शांत के साथ ब्रेकफास्ट किया, उसने मुझे विस किया, वेटर को ट्रिप दिया, उसने मुझे सलूट किया, मैं शांत के साथ घूम कर जब थक गया मैं घर वापस आ गया, मैं शांत के साथ घूम कर जब थक गया मैं घर वापस आ गया, आते ही बीबी ने प्रश्नों का बौछार लगा दिया, आते ही बीबी ने प्रश्नों का बौछार लगा दिया, बच्चों ने फरमाइशों का डिमांड लिस्ट थमा दिया, बच्चों ने फरमाइशों का डिमांड लिस्ट थमा दिया, घर में मुझे शांत से बैठने भी ना दिया, घर में मुझे शांत से बैठने भी ना दिया, आते ही मुझे राशन लाने का पुलिंदा थमा दिया, आते ही मुझे राशन लाने का पुलिंदा थमा दिया, मेरा सर चकरा गया, फिर शांत ढूंढने चल दिया, जब कई दिन शांत के साथ बिता दिया, फिर मेरा मन बेचैन हुआ, बच्चों की किलकिलाहट सुनने को, उनके बाल हट देखने को तरस गया, बीबी से मिलने के लिए व्याकुल हुआ, शांत और अशांत बहनों में वाकयुद्ध हुआ,

0: शांत और अशांत बहनों में वाकयुद्ध हुआ। शांत हार गई, अशांत जीत गई। इस माया मोह से अपने को न रोक पाया, मैं वापस फिर घर लौट आया। देखिए, आज कंक्रीट वो हो गए, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नदियों में सब बहाया जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ये प्रदूषण पे मेरी व्यंग रचना है कि कागजों में दिखा रहे हैं, पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, नकली पेड़ पौधे लगा गांव दिखा रहे हैं। पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, नकली पेड़ पौधे लगे गांव दिखा रहे हैं। हरियाली जिनको नहीं दिखाई दे रही, उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं। हरियाली जिनको नहीं दिखाई दे रही है, उनको हम कागजों में दिखाई दे रहे हैं। अरे, गंगा गोमती में सुबह शाम कचरा बहा रहे हैं, गंगा गोमती में सुबह शाम कचरा बहा रहे हैं, लेकिन कागजों पे पर उसे प्रदूषण मुक्त बता रहे हैं, लेकिन कागजों पर उसे प्रदूषण मुक्त बता रहे हैं। अरे, जिनको ये नदियाँ प्रदूषण मुक्त नहीं दिखाई दे रही, उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं, उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं। अरे, कपड़े का थैला साथ ले जाने में लोग शर्मा रहे हैं, कपड़े का थैला साथ ले जाने में शर्मा रहे हैं। अरे, पॉलीथीन का प्रयोग शौक से किए जा रहे हैं, उसमें भी नहीं शर्मा रहे हैं। अरे, मवेशियों के मरने पे जरा सा भी शोक नहीं मना रहे हैं। अरे, पॉलीथीन प्रतिबंधित जिनको नहीं दिखाई दे रही, उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं। पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, नकली पेड़ पौधे लगा गांव दिखा रहे हैं। हरियाली जिनको नहीं दिखाई दे रही, उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं। देखिए, मैं अपनी पत्नी से एक खास कविता है, बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरी शादी के 25 साल पूरे हुए, तब मैंने देखे उनको, देख के कहा है, तुम मुझे देखा करो, मैं तुम्हें देखा करूँ, तुम मुझे देखा करो, मैं तुम्हें देखा करूँ, एटीएम मैं तुम्हारा समझ के मुस्कराया करो, तुम मुझे देखा करो, मैं तुम्हें देखा करूं, एटीएम मैं तुम्हारा समझ के मुस्कराया करो। अरे, किटी पार्टी करो चाहे शॉपिंग करो, किटी पार्टी करो चाहे शॉपिंग करो, पैसे चाहे जैसे खर्च करो, पैसा चाहे जैसे करो, बस यूं ही मुस्कराया करो, बस यूं ही मुस्कराया करो। और ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, अपनी उम्र को छुपाया करो, ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, अपनी उम्र को छुपाया करो, मुझको तुम वृद्ध बताया करो, मुझको तुम वृद्ध बताया करो, और बस यूं ही मुस्कराया करो। ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, अपनी उम्र को छुपाया करो, मुझको तुम वृद्ध बताया करो, बस यूं ही मुस्कराया करो। अरे, जीवन की गाड़ी यूं ही चलाती रहो, जीवन की गाड़ी यूं ही चलाती रहो, प्रेम को यूं ही निभाती रहो, मैं तुम्हारा रहूँगा तुम हमारी रहो, बस यूं ही मुस्कराती रहो, बस यूं ही मुस्कराती रहो।
1: अपनी कुछ हास्य रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे श्री प्रवीण कुमार शुक्ला। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700000।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:10। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सआदत हुसैन खान की गाई नात एवं कवालियाँ।

सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद सादत हुसैन खान की गाई नात एवं कवालियां, और आइए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत सी कवाली।

उस्ताद सआदत हुसैन खान की गई नात और कव्वालियाँ अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपको सुनवाने जा रहे हैं हेमलता का गाया अखियों से के झरोखे से, इस फिल्म का गीत।

हेमलता की आवाज में अभी आप सुन रहे थे अखियों के झरोखों से, इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यस्सी दास को त्रिशूल फिल्म के इस गीत में।

त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं किशोर कुमार, येसुदास और लता मंगेशकर की। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने

0: के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन

मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार।

0: बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9.

0: its demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर टू का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ ड्रोन्स, रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वज़ीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ़ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
2: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के TMC इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद व शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में

0: कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मतवक्का है, जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
1: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज़्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखिर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज़ सुनाया जाना चाहिए, नज़ अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज़ उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सज़ा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और ज़ेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज़ या ज़्यादा से ज़्यादा अगले रोज़ रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का ज़खीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की ज़रूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़र्रई मकासद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज़्ज़म और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल

0: तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोछर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आपनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी ज़ेर इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अलीफ तआवुन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने आबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़्ज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाइजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की

श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरू होने से पहले ही हमें मिलने लगते हैं आपके ढेरों ईमेल, और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमें लिखते हैं अपनी फरमाइश और अपने मन की बातें भी। और देखिए, जो हमने पहला ईमेल शामिल किया है वो हमें आया है ग्राम और पोस्ट ललहुआ ज़िला खीरी से, और ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं विजयपाल यादव, शुभम, शिखा, ऋचा, गुड़िया, बबलू, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। आप सभी ने हमको ईमेल किया है और अपनी फरमाइश तो आपने ज़रूर जाहिर की है, जिसे हम पूरा ज़रूर करेंगे भी, लेकिन आपने बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से इतनी बड़ी, इतनी गहरी और गूण बात हमें लिख भेजी। आप लिखते हैं कि समय और शब्द दोनों बहुत अनमोल होते हैं, एक बार अगर निकल जाएं तो फिर वापस नहीं आते, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए और समय की कदर कीजिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही इंसान की असली पहचान बनाता है। जी हाँ, कितनी सहजता से आपने बात कह दी, और जब मैं आपका ये ईमेल पढ़ रही थी तो अचानक ही मेरे दिमाग में ये चीज़ वाकई में आई कि न जाने इस ज़िंदगी में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, है ना, और हम लोगों में क्या याद रखते हैं। हमने कभी ये नहीं याद रखा होगा कि उन्होंने किस कलर का सूट पहना था, किस रंग के जूते पहने थे, ठीक है ना, हम ये नहीं याद रख पाते हैं। हम क्या याद रखते हैं, किसने कौन सी बात हमें कब कही थी। बातें जीवन भर के लिए हमारे जहन में बैठ जाती हैं, है ना, और किस तरह का व्यवहार हमारे साथ हुआ कि हमने अगर उनको, उनका अभिवादन किया, हमने नमस्ते किया, तो उन्होंने किस तरह से हमें नमस्ते किया, ये तक हमको याद रह जाता है। तो देखिए ना, छोटी छोटी बातें हमारे व्यवहार का हिस्सा बनती हैं और लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। वाकई बहुत सुंदर सी बात आपने लिखी, और भाई इसी बात पर आपकी पसंद हम आपके रेडियो सेट पे पहुंचाए देते हैं। बाजीगर फिल्म का गीत आपने सुनना चाहा था, पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पे आवाज़ें कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और अब शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में अगला फरमाइशी ईमेल। हमें आया है मोहाली चंडीगढ़ से, और ईमेल करने वाले श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आपने फरमाइश की जख्म फिल्म के गीत की। आपके रेडियो सेट पे पहुंचा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म का गीत।

जख्म फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। शामिल कर रहे हैं एक और फरमाइशी ईमेल, खुर्जा यूपी से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन और अंकुश अरोड़ा, आप सब ने हमें मिलकर ईमेल किया। और बशीर बद्र साहब का लिखा हुआ एक शेर आप ईमेल में लिखते हैं, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। जी हाँ, अपनी कलम से न जाने कितने खूबसूरत शेर और कितनी बेहतरीन गज़लें बशीर बद्र साहब ने लिखी और हम तक पहुँचाई, और कल चांद के साथ वो चले गए आसमान पर, इस फ़नी दुनिया को अलविदा कह दिया उन्होंने और हमारे बीच एक इतने मुकम्मल शायर अब नहीं हैं। लेकिन खैर, उनकी लिखी शायरियाँ और गज़लें और शेर हमेशा हमारे बीच रहेंगे। और साथ ही आप ईमेल में लिखते हैं कि आपका एक विचार है, आप लिखते हैं कि अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं तो आपको भी सामने वाले की इज़्ज़त करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, सही बात है कि आप शायद किसी से कुछ छीन लें, लेकिन आप जो मान हैं, जो सम्मान हैं, वो आप छीन नहीं सकते, वो आपको कमाना ही पड़ता है। बहुत खूबसूरत सी बात, और बशीर बद्र साहब का ज़िक्र आपने अपने इस ईमेल में किया और अपनी फरमाइश हमसे ज़ाहिर की। आपके रेडियो सेट पे पहुँचाए देते हैं आप ही की पसंद का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, फ़िल्म का नाम सरफरोश।

सरफरोश फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पे पहुंचा रहे थे, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की थी। और अब शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइशी ईमेल। ये ईमेल हमें आया है सरधना मेरठ से, और ईमेल करने वाले श्रोता हैं अनिल जैन, संयम जैन और मुस्कान जैन। आपने फरमाइश की त्रिदेव फिल्म के गीत की। सपना मुखर्जी और अमित कुमार की आवाज़ों में लीजिए पेश है त्रिदेव फिल्म का गीत।

त्रिदेव फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा को दीजिए इजाज़त।

त्रिदेव फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा को दीजिए इजाज़त।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है रात्रि के 10 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में दुश्मन फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना छोटी सी बात इस फिल्म का गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अमर अकबर एंथोनी इस फिल्म का गीत अभी आपकी रेडियो सेट तक पहुंचा रहे थे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन को चितचोर फिल्म के इस गीत में।

रविंद्र जैन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चित्तचोर फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30। इसी के साथ प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं कृष्ण चंद्र गुप्ता का राग जोग में विचित्र वीणा वादन।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता का राग जोग कौंस में विचित्र वीणा वादन, और इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर

0: आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।